आशा भोसले की आवासी सजाई ये गीत आप सुन रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी 1970 में। साथियों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसे ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजाइए गीत जिंदगी फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 रिलीज ये फिल्म थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

मुकेश लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इंद्रजीत सिंह तुलसी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम शोर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1972 में। और अब आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

पंडित जसराज के स्वर से सजा ये रचना अभी आपने सुनी। वसंत देसाई का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी। साथियों, फिल्म का नाम लड़की सहयाद्री की, जो रिलीज हुई थी ये फिल्म 1966 में। इसी गीत रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून वर्ष 2026। प्रातः की 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दिए देते हैं आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे 6:05 पर। अर्पण कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर। 6:44:30 पर श्रोता साथी सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज इसमें बाल कांड होगा। आज इसका 92वां भाग प्रसारित किया जाएगा। संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं 6:55 पर। हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 7 बजे। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम योग पर आधारित कार्यक्रम विशेष श्रृंखला ये साथी होगी जिसमें आज का आसन रहेगा शशांक आसन। इस कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। सात बजकर 7:30 पर आज सवेरे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 8:00, अंग्रेजी में 8:15 पर।

उर्दू में समाचारों का वक्त रहेगा प्रातः 8:30। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम सुनिएगा आप 8:45 पर। ये थी आज के कार्यक्रमों से संबंधित कुछ जानकारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2018

0: 30 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ईश्वर जो कुछ भी हमारे पास आने देते हैं वो हमेशा एक उद्देश्य के साथ होता है। वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सबसे बड़ी गलती और सबसे गहरे दर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वागत आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद ने कहा है कि शांत व्यक्ति तब तक शांत रहता है जब तक उसे काम न करना हो, फिर वो तत्परता से कार्य में लग जाता है और जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है वो पुनः शांति के केंद्र में वापस लौट जाता है। आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, उस पेंडुलम की तरह जो स्थिर रहता है परंतु जब भी आवश्यकता हो गतिशील होने के लिए तैयार रहता है।

महात्मा बुद्ध के अनुसार अपने मन में कभी भी बीमारी या कमजोरी के विचार न आने दें। आप देखेंगे कि आपका शरीर बेहतर होता जा रहा है। याद रखें कि मन ही वो शक्ति है जो इस शरीर का निर्माण करती है, और यदि मन कमजोर है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। किसी भी बात पर शोक या चिंता न करें।

6:35 और 40 सेकंड अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आचार्य चाणक्य के अनुसार वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं।

संत रविदास कहते हैं कि यदि आपका मन पवित्र, सच्चा और साफ है तो आपके पास मौजूद बर्तन का जल ही गंगा जल के समान है। ईश्वर पवित्र मन में ही वास करते हैं।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: विदेश सचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्। यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गौतम बुद्ध नगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमान सेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइंस संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000 वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20-20 विश्व चषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋषा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:11 और 4 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला आज का आसन, शशक आसन।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हमारी लाइफस्टाइल पहले से अब तक काफी हद तक चेंज होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेस यानी तनाव हमारे जीवन का एक अंग बनता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है और मेंटल स्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ही ले लीजिए, जैसे आजकल लोग सीढ़ियों पर चढ़ना उतरने की बजाय एक्सेलरेटर या फिर लिफ्ट का प्रयोग करने लगे हैं। तनाव के कारण हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगे हैं और यही तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह हमारे शरीर में एक बहुत बड़े विकार के रूप में प्रकट हो जाती है और हमारे शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होने लगती है। नकारात्मक सोच आने लगती है, हर समय स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगता है। अब ये समस्याएं एक मनुष्य

0: अच्छे के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार और समाज के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। पर यदि हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्तर पर पड़ता है बल्कि मानसिक स्तर पर भी पड़ता है और काफी हद तक हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तनाव को कम करने के लिए आज मैं आपके सामने एक योग अभ्यास लेकर आई हूं जिसका नाम है शशक आसन। तो आइए जानिए शशक आसन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दोनों पैरों में कुछ इंच की दूरी बना लें। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच अपने आसन पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं और ठुड्डी को अपने आसन पर टिकाने का प्रयास करें। अपनी दोनों भुजाओं को समानांतर रखें, सामने की ओर देखें और इस स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। आप इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड की समय के लिए भी रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, यानी वज्रासन में वापस आ जाए। कुछ क्षण पश्चात दोनों पैर सामने की ओर ले आए और दंड आसन में विश्राम करें। शशक आसन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक है। यदि आपको पीठ दर्द की समस्या है या फिर घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो यह आसन आप अवॉइड करें। उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। शशक आसन की स्थिति में आप मकार ध्वनि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक सेशन में कम से कम यह अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराए और शशक आसन की स्थिति में जब आप बने रहते हैं तब वहां पर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और अपने श्वास पर श्वास की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिदिन करें योग और रहें निरोग। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन। 7:15:33 हो गए हैं। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात की ओर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। आइए प्रोग्राम का पहला गीत लेते हैं फिल्म आराधना से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

मौसम के बारे में जान लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है और बादल छाए रहेंगे। सूर्य उदय हुआ सुबह 5:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:20।

एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। 8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर कार्यक्रम होगा दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर घूमने चलेंगे लवासा महाराष्ट्र प्रोग्राम तस्वीर में। और 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

मुलाकात हाय हाय हाय मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे मिलेगा कुछ तो दिल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे 8:45 पर फिर मिलूंगी लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और अब सुनिए आज सवेरे।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं।

0: जीवन।
1: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
2: नमस्कार मनोज एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 8.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Listeners, we bring you our daily news magazine program. The next 30 minutes are going to be packed with national and international news, metro city updates, and of course, at the end of the program, we shall also be discussing what makes 15th of June so special. We'll talk about personalities associated with today's day, and of course, Manoj, we'll also talk about the important events that happened in history on this day. But of course, first, let's begin with the news headlines.
1: Yes. अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इस महत्वपूर्ण समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमरीका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संबंधित यूरेनियम

0: हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह सहित कई लोग मारे गए थे। आयातुल्ला अली खामेनेई के पुत्र मुज्तबा अब ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. Mr. Modi will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing his first leg of his visit to Nice in France. In a social media post, Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, automobile and railway manufacturing.
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे।
1: वेल लिसनर्स, व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन वी हियर द नेम फ्रांस? Paris, the Eiffel Tower, but the country is known for much more. A global hub of art and luxury, France is full of hidden jewels. One such gem is Evian, which is hosting the G7 summit starting today. More from our correspondent Ankit Kumar, who is in Evian, to tell us what makes this picturesque city so special.
2: Located perfectly between the vast Alps mountains and the beautiful Lake Leman, Evian is a city of pure nature and peace. It's also just a short distance from Switzerland, which makes its location even more special. When people hear the name Evian, they immediately think of water, and they are right. This city is famous all over the world for its pure mineral water. Hundreds of years ago, people discovered that natural spring water here are very good for health. Since then, it became a favorite resting place for the royal families and wealthy elites of Europe. Walking through the streets of Evian feels like stepping into a beautiful old storybook. You can see grand old buildings, public water fountains everywhere, and lovely green parks. The cool mountain breeze from the Alps and the calm blue water of Lake Leman make this place truly magical. It's not just a city. It's a wonderful experience of nature and history. For Aaj Sabere, this is Ankit Kumar reporting from Evian, France.
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। इंडिगो एयरलाइन की पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर सुबह 8:05 पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरू के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान शुरू होगी। जेवर हवाई अड्डे से पहली उड़ान सुबह 8 शुरू होगी। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जाएंगे। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 28 मार्च को जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। प्रमुख उड्डयन केंद्र के रूप में विकसित इस हवाई अड्डे में पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की वहनीय क्षमता है। भविष्य में यह हवाई अड्डा विश्व स्तरीय उड्डयन केंद्र बन जाएगा और क्षमता बढ़कर 22.5 करोड़ यात्री हो जाएगी।
1: जम्मू एयरपोर्ट विल सेलिब्रेट यात्री सुविधा दिवस टुडे विद अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग पैसेंजर कन्वीनियंस, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड शोकेसिंग वेरियस पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज। स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस इन व्यू ऑफ द अपकमिंग श्री अमरनाथ यात्रा टू इंश्योर अ स्मूथ एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर पिलग्रिम्स अराइविंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। डेडिकेटेड हेल्प डेस्क

0: Information counters, additional staff and improved passenger management systems have been established to facilitate the movement of pilgrims.
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है।
0: एंड मनोज, वी हैव बीन यू नो इन द रीसेंट पास टॉकिंग सो मच अबाउट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो टुडे इज ग्लोबल विंड डे एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन June 15 टू प्रमोट विंड एनर्जी एंड इट्स रोल इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस टुडे इन गोवा अंडर द थीम विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। द कॉन्फ्रेंस विल विटनेस द रिलीज ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट एलिवेटिंग इंडियाज विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। वी हैव अ रिपोर्ट।
2: India's wind energy sector is expanding steadily with rising installed capacity and strong wind resource potential across key states. It is increasingly supported by domestic manufacturing and its role in meeting renewable energy targets. To strengthen the sector, the government has introduced several initiatives including competitive bidding, renewable purchase obligations, the repowering policy, national offshore wind energy policy and measures to boost domestic manufacturing. And today, India stands as the world's fourth largest wind power market. Installed wind energy capacity in the country has increased from just over 21 gigawatts in 2014 to more than 56 gigawatts by March this year, while an additional 28 gigawatts are under implementation. The country also recorded its highest ever annual wind capacity addition of over 6 gigawatts in 2025-26. Wind turbine manufacturing capacity has more than doubled to around 24 gigawatts, with 70-80% indigenization achieved across key components. Additionally, more than 900 wind monitoring stations have also been set up across the country to identify high potential sites. With a target of achieving 100 gigawatts of wind capacity by 2030, wind energy is expected to play a major role in India's goal of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity and net zero emissions by 2070. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112317171 व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं।
0: And listeners, now let's take a look into the world of sports. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. Batting first after winning the toss, India posted 170 runs in their allotted 20 overs. In reply, Pakistan were bundled out for 106 runs in 17 overs, falling short of the target. Dipti Sharma was adjudged player of the match.
1: अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल यमुना तट स्वच्छता अभियान के तहत सोनिया विहार के ढाई पुश्ता घाट में 2 घंटे का श्रमदान किया। श्री वाही ने कहा कि यमुना करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है, इसलिए इसकी स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यमुना में कूड़ा, पूजा सामग्री और प्लास्टिक न डालें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। दिल्ली की एक और खबर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कल ईस्ट किदवई नगर में एक पेड़ मां के नाम

0: रविवार अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। श्री चहल ने बताया कि पिछले लगातार 28 रविवार से नगर पालिका परिषद ये अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ऐसे प्रयास नई दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी का अभियान है। उन्होंने नागरिकों से पौधों की देखभाल करने और उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की अपील की।
1: Well, let's take a look at the news from Chennai. The Tamil Manila Congress has withdrawn from the NDA alliance. Party President G.K. Vasan said the decision was taken to revive and strengthen the party and was not due to differences with alliance partners or an intention to join another alliance. The decision was made at the party's executive council meeting in Chennai. The Economic Offences Wing has booked a woman inspector of the Greater Chennai Police in connection with an alleged 20 crore rupees gold coin investment scam. She has been suspended from service. According to the police, she was named in an FIR along with the promoter of the scheme after a bank employee complained that he was cheated after investing in the venture.
0: Mumbai, Maharashtra ki khabar. Mumbai Antarrashtriya Film Mahotsav MIFF का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें भारत और विश्व भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में, लघु कथाओं और एनिमेशन फिल्मों का एक विविध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव आज से लेकर इस महीने के 21 तारीख तक चलेगा। महोत्सव में भारत और विश्व भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में, लघु कथाएं और एनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा इसमें मास्टर क्लास, वेब्स, डॉक बाजार, उद्योग मंच और मुंबई थ्रू अ थाउजेंड आईज शीर्षक से एक एआई सिनेमा हैकाथॉन भी शामिल होगा। फिल्मों की स्क्रीनिंग मुंबई के कई स्थानों पर आयोजित की जाएगी। मुंबई की एक और खबर, बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने जल संरक्षण में सुधार और सार्वजनिक स्थानों को अधिक हरित बनाने के लिए मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित दो पुरानी झीलों भुजाले तालाब और कमल तालाब के जीर्णोद्धार की योजना शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि सफाई का काम शुरू हो चुका है और भुजाले तालाब से 90 मीट्रिक टन गाद हटाई जा चुकी है। नगर निगम की योजना उत्तरी मुंबई की 9 झीलों को पुनर्जीवित करने की है।
1: The two-day RISE conclave in Bengaluru concluded with a commitment to strengthen collaboration between academia, research institutions, industries, MSMEs and startups. Participants agreed to work together in areas such as aerospace, food technology and data science. The Salar Jung Museum in Hyderabad celebrated its 75th anniversary yesterday, which also marked the 137th birth anniversary of its founder, Nawab Mir Yusuf Ali Khan Salar Jung III. Speaking at the event, Governor Shiv Pratap Shukla said that Hyderabad's identity goes beyond the Charminar and highlighted the museum's important role in preserving the city's cultural heritage. And Manoj, what's the news from Kolkata?
0: Kolkata, huh? पश्चिम बंगाल में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर अभियान आज से राज्य भर में शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पंजीकरण कराने में सहायता करना है। सरकारी कार्यालयों और अन्य सुविधाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आम लोग अन्नपूर्णा योजना, युवा शक्ति योजना, पीएम किसान योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिलों और कोलकाता में कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।
1: एंड नाउ लेट्स टेक एन अपडेट ऑन द वेदर।
0: जी, तो पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज दोपहर या शाम के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सरबजीत से।
1: जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज।

0: Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature 21 degrees Celsius, maximum around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm. Temperatures will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. And Manoj, today is 15th June. Let's turn the pages of history and let our listeners know what's so special about today's day. The first event, 1799, 15 June, the Rosetta Stone, an ancient Egyptian granodiorite stele inscribed with a royal decree, was discovered in the Egyptian port city of Rashid.
1: 1834 mein aaj hi ke din lagbhag 356 varshon tak chalne ke baad kukhyat Spanish Inquisition के को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से भंग कर दिया गया था
0: 1908 ऑन दिस डे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इट वाज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सेकंड ओल्डेस्ट इन इंडिया 1955 ऑन दिस डे द मनुआ डिक्लेरेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वाज ऑफिशियली साइंड बाय 18 नोबेल लॉरेट्स एट लेक कॉन्स्टेंस जर्मनी
1: आज ही के दिन 1975 में अंतरिक्ष होड़ के चरम पर अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्षयान को पहले संयुक्त मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था
0: 1996, 15th June, MSNBC, the prominent American cable news television channel, was officially launched as a joint venture between Microsoft and General Electric's NBC unit.
1: 2006 में आज ही के दिन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर वर्तमान नाम एक्स को आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए लॉन्च किया गया था और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है तो सबसे पहले याद करते हैं निर्मला देवी को उनकी आज पुण्यतिथि है उनका जन्म 7 जून 1927 को बनारस में हुआ था उन्हें दुलारी के नाम से भी जाना जाता है वे 1940 के दशक की एक भारतीय अभिनेत्री और पटियाला घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थीं बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा उनके बेटे हैं आइए सुनते हैं उनका एक गायन

0: We are also remembering today Kushal Konwar. Today is his death anniversary, a freedom fighter from Assam. Kushal was hanged in 1942 during the Quit India movement. In 1921, while still at school, Kushal was inspired by Gandhiji's call for a non-cooperation movement and took active part in it.
1: आज पुण्यतिथि है शिव दयाल साहब की. उनका मूल नाम तुलसी राम था. उनका जन्म 24 अगस्त 1818 को आगरा में हुआ था. वे दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, जिसके अनुयायी हिंदू और सिख दोनों हैं. इन्हें राधा स्वामी मत की शिक्षाओं को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है. इनके द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति सुरत शब्द योग के तौर पर जानी जाती है. इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक गद्य में और एक छंद में. इन दोनों पुस्तकों का शीर्षक सार वचन है.
0: We are paying tributes to Sri Rangam Srinivasa Rao. Today is his death anniversary. Poet, lyricist, also known for his works in Telugu literature and films. Sri Srinivasa Rao is noted for anthology Mahaprasathanam, recipient of a National Film Award, Nandi Award and the Sahitya Academy Award.
1: आज जयंती है देवी प्रसाद राय चौधरी की. वे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे. उनका जन्म 15 जून 1899 को मीरपुर में हुआ था. उन्हें भारत सरकार द्वारा 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.
0: We are remembering today Jose de Almeida. Today is his death anniversary. A multifaceted artist, writer, choreographer of futurism and widely considered one of the most influential

0: पोर्चुगीज एंड यूरोपियन आर्टिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी।
1: आज जयंती है जिया फरीदुद्दीन डागर की। उनका जन्म 15 जून 1932 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। वे भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे। शानदार ध्रुपदिया गायक उस्ताद जियाउद्दीन डागर के बेटे फरीदुद्दीन ने अपने दिवंगत भाई जिया मोहियुद्दीन डागर के साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। जिया फरीदुद्दीन डागर को तानसेन सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका ध्रुपद गायन।

0: We are paying tributes to Ullar S. Paramaswamy Iyer, popularly known as Ullar, a poet of Malayalam literature and a historian. He was one of the modern triumvirate poets of Kerala in the first half of the 20th century. Umakeralam, a Mahakavya, and Kerala Sahitya Charitram, these are the two major works for which Paramaswamy Iyer is most remembered.
1: आज जयंती है तारक नाथ दास की. उनका जन्म 15 जून 1884 में बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था. उन्हें भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है. तारक नाथ दास बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे. छात्र जीवन में ही उनका संपर्क अरविंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और चितरंजन दास जैसे नेताओं से हुआ. देशभक्ति के रंग में रंगे इन नेताओं के संपर्क में आकर तारक नाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और देश के क्रांतिकारी सिपाही बन गए. उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे. लेकिन शीघ्र ही अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ गई. पुलिस के पीछे लग जाने पर युवा तारक नाथ 1905 में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए. एक वर्ष वहां रहकर फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे. यहां उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से विश्व जनमत को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया. उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में लाला हरदयाल आदि की भी सहायता की. पत्रकारिता तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों के साथ उन्होंने अपना छूटा हुआ अध्ययन भी आरंभ किया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमए और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.
0: लिसनर्स, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एडवर्ड हैगरब ग्रेग, अ नॉर्वेजियन कंपोजर एंड पियानिस्ट. ही इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडिंग रोमांटिक एरा कंपोजर्स एंड हिज म्यूजिक इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड क्लासिकल रिपर्टरी वर्ल्ड वाइड. हिज यूज ऑफ नॉर्वेजियन फोक म्यूजिक इन हिज ओन कंपोजिशंस ब्रॉट द म्यूजिक ऑफ नॉर्वे टू फेम. वी हैव दिस ब्यूटिफुल पीस ऑन द पियानो फॉर यू.

आज जयंती है सज्जाद हुसैन की। उनका जन्म 15 जून 1917 को सीतामऊ केंद्रीय भारत एजेंसी मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनका पहला काम सोहराब मोदी के मिनर्वा मूवी टोन में 30 रूपये महीने पर था। संग दिल सैया, खेल हलचल और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों से अनूठा संगीत देने में सफल रहे सज्जाद साहब। दरअसल उस जमाने में पार्श्व गायकों और गायिकाओं के लिए कठिन फनकार थे, जिनकी धुनों को निभा ले जाना सबके हौसले से परे की चीज थी। उनकी दुरूह संगीत शब्दावली को समझना हर एक के बस की बात नहीं थी। स्वयं लता मंगेशकर का कहना था कि मैं सज्जाद साहब की संग दिल के गीतों को अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।

0: And Manoj, since you've made the mood so musical now, I cannot but talk about Suraiya ji. Today is her birth anniversary. The great actress, playback singer. She has to her credit almost 70 films and 338 songs.
1: 40वें और 50वें दशक में सुरैया ने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया. अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी. आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत.

0: और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
4: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के

0: वक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य

0: करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

0: तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बर्तिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हममनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन और सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी बर्तिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर

0: के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क के लिए ये पहला दौरा है। वजीर आजम का ये दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वजीर आजम के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमत आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में एमएलए धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
3: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास

0: सबका विश्वास सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तस्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहरा नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकाने पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनके मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी की खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 01-1-2-3-3-1-0-4-8-1, 01-1-2-3-7-1-7-1-1-7, 01-1-2-3-7-1-7-1-0-6। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों محققین اور صنعتکاروں کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی. بھارت کے خلائی شعبے میں نمایاں تبدیلی یہ ہمارے قومی شعور کا اہم حصہ بن چکی ہے. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ کے اس بیان کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ اور ایران فوجی کارروائی ختم کرنے، آبنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی آج برتیسلاوا میں سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو سے بات چیت کریں گے. 52ویں G7 سربراہ کانفرنس آج فرانس کے شہر ایوان میں شروع ہوگی. وزیراعظم مودی کل آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کریں گے. جوہر میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آج صبح کمرشل پروازیں شروع ہو رہی ہیں. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی نے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں. یہ امتحانات اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوں گے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں ایجبسٹن میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبر نامہ ختم ہوا.

संत रूमी ने कहा है कि तुम सागर की एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में समाया पूरा सागर हो। म्यूजिकल दिल्ली सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 8:46 और 8 सेकंड। पूजा है आपके साथ, नमस्कार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन अवसर पर कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के

प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ आंधी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर आप मन ही मन में अपने आप को दाद दे रहे हैं आहा क्या मौसम है, तो फिर बहुत सही कर रहे हैं। जून 15 है ये 166वां दिन, यानी कि 166th डे। अभी भी 199 डेज पड़े हुए हैं भाई, बहुत सारे दिन हैं लगभग, इसमें तो हमारे सारे काम हो जाने चाहिए। तो इस मंडे को सलाम करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि हम मंडे को मनाते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को।

तो चलिए इसी मौसम को सलाम करते हुए मौसम की एक और जानकारी हम आपको बता दें कि अब उड़ान से पहले ही पता चल जाएगा मौसम का हाल। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारत का पहला मौसम सिस्टम, स्मार्ट वेदर सिस्टम, बस आप उसका जाकर के उसको देखिए और समझिए। और आज की अगर हम बात करें तो फिर छाता या फिर हल्की रेन प्रोटेक्शन आप अपने साथ रख सकते हैं, नहीं तो फिर इतनी प्यारी बारिश में अगर हो तो, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें फील कुछ होता है और दिखता कुछ है। दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग और इस वक्त अभी वही हो रहा है क्योंकि आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी फील हो रही है लेकिन सामने अच्छा नजारा देख के इट्स अ गुड फील। म्यूजिकल दिल्ली है ये आपके लिए, आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और ये मोहम्मद रफी हैं।

जी हाँ, बात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्यार में जब तक हो तब तक प्यार जिंदा रहता है, और वो प्यार कुछ भी हो सकता है, दोस्ती हो सकती है या फिर आप जो चाहते वो हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब प्यार खत्म होता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत खामोशी से होती है, तो इसलिए बात करना कभी ना छोड़ें, बतियाते रहें, तभी सब कुछ सारे रिश्ते नाते जिंदा रहेंगे। जैसे धीरे धीरे दो लोग हम होते हैं, ठीक वैसे ही दो लोग धीरे धीरे मैं में बिखर जाते हैं। आओ बात करें आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह है म्यूजिकल दिल्ली की। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:20।

इसीलिए तो हम हाजिर हो जाते हैं। और कई बार यही ख्याल रहता है कि शहर है, लोग हैं, भीड़ है और बहुत सारा काम है, और इन सब के बीच में हम हैं, वो नहीं है जो हमारे नाम है। फिर लगता है कि देखिए शोर है, फिक्र है, लेकिन फिर भी ये सच है कि नफरतों में मोहब्बत को कभी नहीं भूलना है। एंजॉय कीजिए। आज बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं जिसे हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ के देखिए, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी।

वैसे बहुत सारी चीजें हैं ना आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर जिनका हम शुक्रिया कर सकते हैं, तो उन्हीं में से एक चीज है ये, यानी कि एजुकेशन। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 22 पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिले होंगे। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाइए, 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाई आप उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा डीयू से बीटेक के लिए आवेदन आज तक, यानी कि जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं 15

जून तक आवेदन कर सकते हैं, आज मतलब लास्ट है। थोड़ी सी जानकारी और चाहते हैं तो फिर जाइए इसकी वेबसाइट पे, देखिए क्या है, क्या चाहिए आपको, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए।

वैसे हम तो हमेशा सही सोच के काम करते हैं, लेकिन कई बार सही करने का रिजल्ट हमेशा हैप्पी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड हमारे बेस्ट फ्रेंड्स अगर हो चुके हैं, हर हाल में हम कूल दिखना चाहते हैं, तो फिर आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। और उसके बाद हम अपने आप से यही कहेंगे कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज कैसी छूटी पता ही नहीं चला। ये है म्यूजिकल दिल्ली।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agnivir Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samruddh Bharat. Join Indian Navy.

लाइफ में हमेशा जमा और घटा नहीं होता, कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो जाता है। और दो लोगों का साथ अगर अच्छे से बना रहे तो फिर वो टीम इतना अच्छा काम करती है कि बस पूछिए मत। 1972 वो साल था जब पंचम गुलजार ने एक साथ काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था परिचय और ये भी एक इत्तेफाक है, यहीं से एक इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ, पंचम आशा गुलजार का इतिहास। ऐसे बेमिसाल गाने आगे बने जिनका कोई जोड़ नहीं। हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, एक्सपेरिमेंट किए। पंचम आशा गुलजार का जादू हम सबके दिल में बसा हुआ है।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: चले।
1: अब इस चलने चलाने से याद आया कि आप एक काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, वो ये है कि बसों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में डीटीसी यात्रियों को अपने सुझाव देने का चांस दे रहा है। इसके लिए डीटीसी ने अपने एक्स हैंडल समेत बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म के सवालों का उत्तर और सुझाव दोनों आप दे सकते हैं, है ना अच्छा चांस। अब भाई लाइफ तभी अच्छी लगती है जब दोनों हाथ में लड्डू हो, लेकिन अगर लड्डू ना हो तो भी अच्छी लगती है जब दोनों हाथ में आपके पास इतने प्यारे प्यारे गाने हो। यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: on.
1: तो क्या आपने देखा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को? भारत सरकार द्वारा युवाओं को देश के टॉप 500 कंपनियों में व्यावहारिक जो उनका कार्य अनुभव है यानी कि प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना। तो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़े इसके लिए जो युवा लोग हैं वो आगे आए और इस प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को फिर से देखें कि क्या है ये।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: वेलकम बैक। तो हम आपसे यही कहेंगे कि भाई देखिए, अगर आपको मीठा खाना मना है तो चलेगा, लेकिन मीठा बोलने से परहेज बिल्कुल ना कीजिए। एक दिल है, एक रास्ता है, एक मन भी होता है, और एक मोबाइल है, एक रेडियो है, और एक मैं हूँ म्यूजिकल दिल्ली में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके साथ, आपके पास जुड़े रहने की

अब जब सपने की बात आई है तो फिर सच्ची सच्ची बताइएगा, कौन सा वाला सपना ज्यादा देखते हैं, प्यार वाला या फिर पैसे वाला? पैसे वाला सपना सच हो जाए तो लगता है कि प्यार भी मिल जाएगा, है ना। हैव अ गुड डे, बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय कीजिए, और ये मंडे आपके लिए है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in

0: IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैज फाइनलाइज्ड अ डील टू एंड देयर 107 डे वॉर एंड ओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, द नैरो वाटरवे यूज्ड टू फेरी 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। US President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
2: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
1: UN Secretary General Antonio Guterres has welcomed the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, reopening of Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. Secretary General spokesperson Stefan Zurich said that this represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to the country after completing the first leg of his visit to Nice in France. In a social media post, Mr. Modi said, "This visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Ivan in France today. The three-day event is being attended by G7 members including Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. Mr. Modi's participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. Union Minister for Ministry of Road and Transport and Highways Nitin Gadkari will visit Shillong today to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the Northeast region. The Union Minister will inaugurate the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition NEII-NFRA 2026 today at the Larathi Performance Center in Mwaka Siang, Shillong. He will also attend the CEO's Roundtable at the NEII-NFRA, which serves as a premier platform for discussions on infrastructure development, investment opportunities and regional growth, bringing together policymakers, industry leaders, investors and other stakeholders from across the country. India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam, Meghalaya during next 6 to 7 days. Parts of northeast India and West Bengal will witness heavy rainfall today. The Met Department said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during next 4 to 5 days. In ICC Women's T20 World Cup opener, India defeated Pakistan by 64 runs in Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. And that is the end of this news bulletin.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने शुरू और बर्मिंघम में एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। समाचार अब विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने का समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: इधर भारतीय शेयर बाजारों में भी आज जबरदस्त तेजी का रुख है। सेंसेक्स 1197 अंक की तेजी के साथ 76725.27 अंक पर खुला। निफ्टी भी 339.15 की बढ़त के साथ 23984.85 अंक पर खुला। विश्व नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिम एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया। श्री गुतरश ने के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की भूमिका की सराहना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समझौते को राजनयिक उपलब्धि बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समझौता जल्दी लागू करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में निर्बाध नौवहन फिर शुरू करने की अपील की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
3: कल रात

0: ब्रेटिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रेटिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लुचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में आज नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। पिछले दशक के दौरान हवाई अड्डा अवसंरचना विकास में 1,40,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIIF आज से शुरू हो गया। औपचारिक उद्घाटन समारोह शाम को मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जबकि फिल्मों की स्क्रीनिंग सुबह से ही शुरू हो गई है।
4: गैर फीचर फिल्मों के बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक फिल्म महोत्सव मिफ का उद्घाटन कॉर्डल बार्कर द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म गुड लक टू यू ऑल, अरविंद बेलार्मिनो और कायला डैनियल रोमेरो द्वारा निर्देशित लघु कथा फिल्म अगापितो तथा सारा डोसा द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइम एंड वाटर के प्रदर्शन के साथ होगा। प्रख्यात फिल्म निर्माता डेविड एटनबरो को सेंटेनरी ट्रिब्यूट के अंतर्गत उनकी 2 फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। 19वें मिफ में 10 मास्टर क्लास और 5 ओपन फोरम चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष के संस्करण में 2 नई क्यूरेटेड श्रेणियां, मराठी फिल्म्स और इकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट भी शामिल की गई है। अंकित आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ के रोमांचक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने शुरू और बर्मिंगहम के एस्बेस्टन में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। आपके नाम है, आपके गाने हैं जो आपने हमें भेजे हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। ये वाला गाना भी आप ही ने रिक्वेस्ट किया है, तभी तो हम लेकर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपके लिए।

0: यही तो हम भी कहते हैं कि भूलने की तो जरूरत ही नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और fmgoldairdelhi@gmail.com ये वो मेल आईडी है जिस पे आप हमें अपनी चॉइस बता सकते हैं कौन सा गाना है और अपने शहर के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए तो और अच्छा लगेगा, है ना। ये है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इन्होंने हमें ना पता है आपको दो तीन नहीं पूरे पांच ऑप्शन दिए हैं फिल्म और फिल्मों के गाने, तो उनका एक गाना है हमारे पास बस अब भी आएगा। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू इन्होंने भी कहा है कि भाई हमारी जो चॉइस है वो जरूर प्ले कीजिएगा। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, ये सब हैं इस वक्त कान लगाए अपनी बारी के इंतजार में। इनका गाना है हमारे पास। इसके अलावा चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा, आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने चॉइस के लिए। हम लेकर के आ रहे हैं ये,
1: तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना।
2: डन
1: डन डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों की निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: और ये है दिल का मेल बॉक्स और आप हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, तहे दिल से शुक्रिया करते हुए और हम भी आपका शुक्रिया करते हैं और आपका हम ये स्वागत भी करते हैं कि भाई नए नए लोग हमारे साथ शामिल हों और अपनी चॉइस बताएं।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के,

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: मम्मी, ये जहाज कहाँ

0: रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
4: दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। बार बार आपके मैसेज हमारे पास आते हैं, हमें अच्छा लगता है। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार, कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, प्रोग्राम के सभी गीत हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, यही तो हम चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तारीफ है और तारीफ को हम स्वागत से ना लें ऐसा कैसे हो सकता है, है ना? जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान है, सलमान है, इरफान है, इसरार है और नरगिस खातून भी हैं।

दिल का मेल बॉक्स है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अच्छा लगता है, अपनी चॉइस का सॉन्ग अच्छा लगता है या फिर आपको अपना नाम अच्छा लगता है? अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आपको मेरा नाम भी अच्छा लगता है तो भी चलेगा। ये है दिल का मेल बॉक्स, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। और ये है नाम जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। और हमें नमस्कार भेजा है जोहार कहते हुए कि एक गीत जो हमें बेहद पसंद है, जरूर जरूर सुनवाइए। आपको पसंद है और हमें भी पसंद है तो फिर हम सुनवा कैसे नहीं सकते हैं, तो जरूर सुनवाएंगे। और जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल हैं ये, साथ में बहुत सारे और लोग हैं और मैं भी हूँ इस गाने के साथ। तेरा वादा, हाय तेरा वादा जो पूरा कर दिया।

वेरी मच मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब संयम, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, और गुड मॉर्निंग कहते हैं हमें महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा राजवीर, अनन्या गायकवाड़ कहते हैं कि भाई हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपने जो हमारा गाना प्ले किया रोटी कपड़ा और मकान का, सबसे पहले उसके लिए हम कहना चाहते हैं शुक्रिया। तो भाई आपका भी शुक्रिया। गांव और डाकघर नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, कोई भी गीत

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

पहाड़ों की गोदी में चुप सा एक सपना, बादलों ने जैसे ओढ़ा हो कोई अपना गहना, झील के किनारे हवाओं की सरगम, लवासा है ये जहां ठहर जाता है हर भागता हुआ मौसम। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल की, और तस्वीर में आज हम आपको दिखाएंगे लवासा की तस्वीर। स्वागत है आपका।

0: देखिए जनाब, जब भी आपको घूमने का मन करे तो उसको कभी भी ये न कहें, रहने दो। यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। और जब भी घूमने का मन करे घूम लीजिए, तो फिर ये है लवासा की राह। पुणे से निकलती है एक मुसाफिर सी चाह, पहाड़ों ने खोली लवासा की राह, घाटियों में गूंजते हैं हवा के गीत, हर मोड़ पे लगता है कि कोई मिल जाएगा आज जरूर। पुणे के पास है ये लवासा, बहुत ही डिफरेंट सा लेकिन अपना सा लगता है, क्योंकि इंसानों ने इसे बड़े प्यार से बनाया है। यहाँ की जब झील देखेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि झील ने चुपके से आपको आईना दिखाया है, बादलों ने पर्वत को गले लगाया है। सड़कें कहती हैं कि भागती दुनिया को छोड़ दो, बस कुछ पल लवासा में जी लो।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम।

कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खो गए तो अचानक से आप जाग जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई हाँ, हम इस तस्वीर में खो गए जिसका नाम है लवासा। लवासा के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक जगह नहीं है बल्कि थके हुए दिलों की एक मीठी सी पनाह है, जहाँ पे हवा भी मुस्कुराती है और मुस्कुरा के यही कहती है कि दो पल बस यहीं ठहर जाओ। पुणे से लवासा की दूरी लगभग 65 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इतनी किलोमीटर की है, जिसे आप बड़े आराम से गाड़ी से जा सकते हैं और वहां पे आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में एक प्लान सिटी है, जाके देखिएगा और उसके बाद फिर हमें बताइएगा। और जब आप जाएंगे ना तो फिर रास्ते में पड़ने वाले बड़े शानदार घाट आपको नजर आएंगे और उन नजारों के लिए गाड़ी से जाना सबसे अच्छा हो

लगता है, क्योंकि जब जहां आपका मन करे आपने गाड़ी रोकी और अपनी अच्छी सी फोटोग्राफ्स ली और आगे बढ़ गए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम, पता है आपको, कैमरे में नहीं कैद कर सकते। उनके लिए हमारी आंखें ही बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आंखों से जो हमने देखा वो दिल में उतर जाता है और उसके बाद हम कभी भी उस जगह को नहीं भूलते हैं। यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और तस्वीर में आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लवासा की, जो है महाराष्ट्र में। वहां पे आप जाएंगे तो आपको लेक साइड प्रोमिनेंट मिलेगा, वारास गांव झील मिलेगी जिसके किनारे आप घूमिए, बड़े सुंदर सुंदर से कैफे हैं, बैठिए और एक कप गर्म कॉफी का हो आपके पास तो फिर यकीन मानिए, अगर आपके सामने वाला चुप भी होना तो भी आपको लगेगा कि शायद कुछ बातें हो रही हैं। यही होता है जब हम अपनी जगह से कहीं दूर जाते हैं, क्योंकि दूरियां सिर्फ दूरियां नहीं होती, दूरियां नजदीकियां बढ़ाती हैं। वेलकम है आपका लवासा में।

0: ये तो जब आप लवासा पहुंचेंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ भाई ये हमने बड़ा अच्छा किया। तो वहां पे आपको पैदल चलिए, वाटर स्पोर्ट्स में अगर आपकी दिलचस्पी है तो फिर आप कीजिए। आप झील में काइकिंग कर सकते हैं, जेट स्कीइंग कर सकते हैं, और उसके अलावा जो यहां का सूर्यास्त है वो नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। और जब जाएंगे ना रास्ते में, तो आपको रास्ते में पड़ने वाला बांध मिलेगा जिसको कहते हैं टेमघर बांध, जो बारिश के मौसम में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। बैम्बू साहेब बांस के अनोखे शिल्प और उत्पाद देखने की एक जगह है, वो देखिए। और एक नज़र में अगर आपने इटली घूमी है, इटली का एक शहर है पोर्टोफिनो, तो लवासा वैसा ही लगता है। इटली के पोर्टोफिनो शहर की तर्ज पे बसाया गया भारत का महाराष्ट्र में जो ये लवासा है, एक नज़र में आपको लगेगा कि कहीं आप इटली तो नहीं आ गए। ये जगह घाटों और खूबसूरत नज़ारों से घिरी हुई है, दिन हो या फिर रात हो, हर वक्त आपको यहां पर कुछ ऐसा नजर आएगा जिसके लिए आप कहेंगे वाह, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहां पे न शोर है, न शहरों की थकान है, सिर्फ और सिर्फ हवाओं में सुकून है। और अगर आपने यहां की खामोशी पढ़ ली, तो फिर हर सफर में आप शायद लवासा ही ढूंढेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई चलो एक बार फिर से हम वहीं चलते हैं। और जब भी घूमने का प्लान आप बनाएं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अपना रिसर्च करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे कि बस ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ घूमने जाइए, और कई बार कुछ भी नहीं करने का जो आनंद है, उस आनंद को महसूस कीजिए। क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, कभी अपने आप से बातें करते हैं, कभी हमारा दिल बातें करता है, कभी हमारा दिमाग कुछ कहता है। कुछ पल सिर्फ और सिर्फ समय के साथ बहिए, लवासा उन्हीं में से एक जगह है, और आपको वो यही कहेगा कि भाई रुक गए, अच्छा किया। यह है तस्वीर लवासा की, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे।
1: देखो मेरा दिल धड़कता है,
2: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर

0: टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नादान दिल आपका घूमना चाहता है, इसीलिए हम हर बार तस्वीर लेके आते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और बताते हैं एक शहर के बारे में। तो आज तस्वीर में जो है उसका नाम है लवासा। सबसे अच्छा समय है यहां पे जाने का जुलाई से सितंबर, यानी कि मानसून के समय में, जब हरे भरे पहाड़ों और झरनों से पूरा का पूरा इलाका ढक जाता है। और यहां पे आप जब जाएंगे तो फिर फोटोग्राफी तो बनती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए भाई इतना सुंदर सब कुछ है तो उसको हम कैद कर ले। झील के किनारे रंगीन इमारतें आप देख पाएंगे, घाट और पहाड़ी सड़कें। मानसून में अगर आप जाते हैं तो सुबह और शाम को धुंध और बादलों वाला नजारा होगा, उसके साथ ही शांत, बिल्कुल शांत ऐसा कुछ आपको फील होगा। कई सारे अनसुलझे से सवाल हैं जो शायद हल हो जाएं, क्योंकि कई बार जब हम अपने आप को समय देते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत का कोई शहर होता तो शायद उसका नाम हम लवासा रखते, जहां तुम हो, मैं हूं और ये फिजा है, बस दिल कहता है ठहर जा। लेकिन कई बार हम सिर्फ अकेले होते हैं और ये सवाल हमारे पास होते हैं जिनके जवाब हमें शायद मिल जाते हैं।

0: तो इस परेशानी का एक ही हल है और वो है घूमना। अगर मैं आपसे कहूं कि लवासा आप क्यों जाएं, तो फिर हमारे पास बहुत सारे उसके जवाब होने चाहिए। तो लवासा आप जाइए अगर आपको नेचर अच्छा लगता है, बड़ी चक्कर वाली घुमावदार सड़कें हैं, पहाड़ है, मानसून की हरियाली है, आप लवासा जाइए। अगर आप रोमांटिक ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, आप तब भी जा सकते हैं जब वीकेंड ब्रेक लेना हो। अगर शहर के शोर से एक दो दिन का शांत ब्रेक चाहिए, तो फिर ये आपके लिए एक बड़ी ही प्यारी सी जगह हो सकती है। ये सब कुछ मिलेगा आपको महाराष्ट्र में पुणे के पास लवासा जो है ना, वहां पे।
1: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: तो फिर हमने आपको बता दी बहुत सारी वजह लवासा जाने के लिए। न कोई शोर है, न शहरों की थकान है, हवाओं में सुकून है, खामोशी अगर आपने पढ़ ली तो फिर हर सफर में आप ढूंढेंगे इसी शहर को जिसका नाम है लवासा। लवासा आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, अगर आप जाते हैं और बताएंगे कि हाँ भाई ये एक ऐसी प्यारी सी जगह है। अगर आप नहीं गए हैं तो फिर हो सकता है कि आप हमें थैंक्स बोलें और यही कहें कि भाई वाह क्या जगह बताई है आपने। तो होके आइए और हमें मैसेज कीजिए, मैसेज में बताइए कि कौन कौन सी जगह थी जो आपने अच्छे से देखी, कौन कौन सी बातें थी जो आपको अच्छी लगी, या फिर आप कह सकते हैं हाँ सेम टू सेम है, मतलब हमने जो कहा वो सब कुछ आपने वहां पे फील किया। तो यूं ही नहीं कहते कि लवासा तुम सिर्फ एक जगह नहीं हो, बल्कि थके दिलों की मीठी सी पनाह हो, जहां हवा भी मुस्कुरा के कहती है कि आओ घूम जाओ।

हम सब बहुत अच्छा मौसम की चाहत रखते हैं और यही कहते हैं कि हाय मौसम बड़ा अच्छा हो जाए तो क्या बात है, लेकिन मौसम मांगे पर उसके साथ साथ नेचर के साथ जुड़िए। नेचर के साथ जुड़ के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लवासा वो जगह है जहां पे आपको उस नेचर के साथ जुड़ने का एक अच्छा सा चांस मिलेगा। तस्वीर लवासा की आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। हम तो हर बार की तरह आपको यही कहेंगे, हैप्पी जर्नी, जाइए घूम के आइए और बहुत रिच होकर के वापस हमें बताइए क्या है और क्या लेके क्या सोच के गए थे। इसी के साथ इंदु पांडे सेज़ बाय बाय, फिर से मिलने के लिए। और अब समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।

0: और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France.

आंगन। कभी आपने गौर किया है कि घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी असल रौनक आवाजों से होती है। रसोई में होती चहल पहल, किसी के हंसने की आवाज, बच्चों की शरारतें, बड़ों की सीख और दिन भर के अनुभवों को साझा करती छोटी छोटी बातें, यही तो हैं वो धागे जो एक घर को घर बनाते हैं। इन्हीं आवाजों के बीच यादें बनती हैं, रिश्ते गहराते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी श्रुति बुरी।

कुछ पल अपने लिए निकाल पाए हों। हम चाहेंगे कि ये साथ आपके दिन का एक सुखद हिस्सा बने। आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें लिख सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। तो आइए इस दोपहर को थोड़ा और आत्मीय, थोड़ा और रोचक बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का घर आंगन कार्यक्रम। वक्त फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और टाल भी दी है। कबीर दास जी ने 500 साल पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यही है कबीर की चेतावनी। आज के जमाने में तो टालना और भी आसान हो गया है, कई बहाने हैं, और हमारे सपने, हमारे रिश्ते, हमारे जरूरी

काम सब कल पर टंगे रह जाते हैं। कबीर का जवाब सिर्फ एक शब्द है और वो है अब। पूरा काम नहीं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बस शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। तो आज इस शो के बाद एक काम जो आप टालते आ रहे हैं वो कर डालिए, हमें मेल भेजिए और हमें बिना देर किए बताइए, और हम भी आपको बिना टाले एक प्यारा सा गीत सुनवाए देते हैं।

आशा भोसले को अभी आप वक्त फिल्म में सुन रहे थे। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम अक्सर घर की चार दीवारी में छुपा देते हैं, जिस पर बात करना जरूरी है लेकिन हम बात ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि वो हाथ जिसने आपको पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ को सहारे की जरूरत है। आज 15 जून है और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस दिन को इसलिए मान्यता दी क्योंकि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये दुर्व्यवहार होता क्यों है? दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट नहीं होता, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कई रूपों में होता है। किसी बुजुर्ग माँ को घर के कोने में बिठा देना, उसकी बात न सुनना, ये भी दुर्व्यवहार है। बुजुर्ग पिता की पेंशन पर कब्जा कर लेना, ये भी दुर्व्यवहार है। उन्हें बोझ समझना, उनकी दवाइयां न देना, उन्हें अकेलेपन में छोड़ देना, ये सब उसी के रूप हैं। और सबसे दुखद बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का शिकार होता है। और अधिकतर मामलों में ये दुर्व्यवहार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का कोई अपना ही होता है। 50% बुजुर्ग किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और इनमें से अधिकांश इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, बेटे की बदनामी होगी। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है। वो बुजुर्ग जो अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567 शुरू की है, जो पूरी तरह मुफ्त और गोपनीय है। हेल्पलाइन एक बार फिर नोट

लीजिए 14567। तो दोस्तों इस दिन का संदेश बहुत सीधा है, अपने घर के बुजुर्ग को देखिए, सुनिए, समझिए, उनकी थकी हुई आंखों में झांकिए, शायद वो कुछ कहना चाहते हों जो आपने आज तक नहीं सुना। जिस पेड़ की छांव में आप पले बड़े हैं, उस पेड़ को अब आपकी देखभाल चाहिए। आज के दिन बस एक काम कीजिए, अपने घर के बुजुर्ग के पास जाइए, उनका हाथ थामिए, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, और सच में इस बार उनकी सुनिए, क्योंकि जो आदर आज हम उन्हें दे रहे हैं वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी सीखती है। ख्याल रखिए अपना भी और अपने बुजुर्गों का भी।

दूरियां फिल्म में अभी आप भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौड़वाल को सुन रहे थे। श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसी विरासत की बात करना चाहती हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के भागदौड़ भरे जमाने में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सुबह की पहली किरण, खुली हवा और बस कुछ पलों की शांति, यही तो है योग का असली स्वागत। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। जब हम हर सुबह 20 मिनट भी प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक रिपोर्ट बताती है कि नियमित योग से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आती है। और सबसे बड़ी बात यह कि योग हमें खुद से मिलवाता है, उस शांत कोने से जो हमारे भीतर है, लेकिन शोर और तनाव में दब गया है। यदि आप योग प्रशिक्षक हैं तो आप योग से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं, लेकिन योग

है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बनाता है। तो दोस्तों, बस एक संकल्प लीजिए, कल से नहीं, आज से, अभी से 5 मिनट का ही सही या 25 मिनट का ही सही, बस शुरुआत कीजिए योग से, क्योंकि योग कोई धर्म नहीं, कोई फैशन नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से सुंदर बनाती है। जैसा हमारे ऋषियों ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो श्रोताओं, क्या है योग करने के सरल नियम, कैसे किया जा सकता है सरलता से योग, आइए जानते हैं योग प्रशिक्षक देविका से। इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: घर आंगन के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। चैनल है आपका अपना आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम वही जाना पहचाना घर आंगन, जिसमें होती है घर की बातें और घर से जुड़े कई मुद्दों की बातें। तो अगर हम कहें कि आप अपने घर में खुशियां समेटना चाहते हैं, बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे जो जरूरी है वो है स्वस्थ रहना। और अगर हम स्वास्थ्य की बातें करें तो बहुत जो जरूरी चीज है वो है व्यायाम करना। तो चाहे वो जिम में जाके हो, चाहे बाहर दौड़ भाग के हो, लेकिन एक जो स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है योग का सहारा लेना, योग से जुड़ना। तो योग का अर्थ ही है जुड़ना। जब आपका मन प्राण आत्मा एकाकार होते हैं तो होता है योग। तो योग के बारे में और जानने के लिए और योग द्वारा हम किस प्रकार अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को, जो कि योग की अध्यापिका है, योग सिखाती हैं और काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। देविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हरिओम सभी को। मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है, मैं योग शिक्षक हूँ, साथ ही साथ एक योगा विद्यार्थी भी हूँ। क्योंकि योग ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कुछ सर्टिफिकेट्स में समेट सकते हैं या कुछ हिस्सों में समेट कर पूरा सीख सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है योग, इतनी बड़ी चीज है उसको सीखने और समझने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि योग है क्या। योग एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, योग को आप एक ऐसा मार्ग कह सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी पूरी जिंदगी चलना सीख सकते। सुबह उठने से लेके आपके रात में सोने तक की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, पूरे दिन की आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपके शरीर का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति को समझिए कि वो आपके शरीर से कैसे जुड़ा है, योगा से उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। योगा इज टू बियॉन्ड देन एक्सरसाइज। योगा में आपका मन, आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी संस्कृति, आपका नेचर, सब कुछ आता है।
0: यानी कि पूरा एक जो जीवन जीने की शैली है, जो हमारा कर्म करने का कौशल है, मैं ये कहूँ कि ये जीवन यापन कैसे करना चाहिए, ये जो हमें सिखाता है वो है योग जी। क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन और जो घर की जो धुरी होती है तो देविका जी वो सबसे पहले होती है घर की महिला, हाँ, तो उसका स्वास्थ्य और उसका मन बिल्कुल सही रहना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्यों ना उसी के बारे में बात की जाए। तो हम देखते हैं कि जो आजकल की महिलाएं हैं, चाहे वो घर में काम कर रही हो चाहे बाहर काम कर रही हो, उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि वो काम से थोड़ा सा अपने आप को कैसे हटा पाए कि वो वापस योग से जुड़े, या अपने स्वास्थ्य को वो थोड़ा सा देखभाल में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप क्या कहेंगी, कैसा होना चाहिए उनका एक लाइफस्टाइल, वो कैसे समय निकालें अपने लिए और योग से जुड़े ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे।
1: आपका शरीर सही है तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपना अच्छे से काम अपने ऑफिस में कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मैम टाइम

0: नहीं होता 90%
1: समय कैसे निकाले.
0: राइट समय की परेशानी सबसे ज्यादा होती है वुमेन्स के साथ इफ दे आर वर्किंग और इफ दे आर नॉट वर्किंग. घर में भी बहुत काम होता है स्टिल वो गिना नहीं जाता बट उसमें बहुत काम होता है. सोने के टाइम पे आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा निकाल सकते हैं.
1: पर ऐसे नहीं कहा जाता देविका जी की सोते हुए थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है सुनते कि खाना खाने के बाद कैसे व्यायाम करें हम.
0: बिल्कुल सोने के बाद टाइम निकालने से मतलब ये है कि उस टाइम आप व्यायाम तो नहीं करेंगे लेकिन सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज योगा की है. प्राणायाम का कुछ पार्ट है कुछ पार्ट योग निद्रा का है जिसको करने के बाद आपकी पूरे दिन की थकान उस आधे घंटे में मिट जाएगी.
1: हाँ क्योंकि निद्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो नींद तो औरतों की शायद ही पूरी होती है. मुझे लगता है औरतें क्या किसी भी घर में अगर हम बात करें आजकल बच्चे भी देर देर तक जाग कर काम कर रहे होते हैं तो ये नींद की कमी तो सभी जगह है. पर ये अच्छी बात बता रही है इसके बारे में और बताएं.
0: तो पूरे दिन का अगर आपका दिनचर्या ऐसे है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट सोने से पहले आप 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो वो पूरे दिन की थकान मिटाने वाली नींद आपको मिल जाएगी. सुबह आप एकदम रिफ्रेश होके उठेंगे.
1: तो ये प्राणायाम कौन सा करना चाहिए?
0: उसके लिए आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में सब अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं. प्रॉपर प्रतिक्रिया के साथ उसको नासाग्र मुद्रा के साथ आप कर सकते हैं. 10 to 15 रेपिटेशन आप उसके करेंगे लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ.
1: अच्छा.
0: आपने कभी देखा होगा पार्क में कई बार लोग ऐसे करते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं एंड दे आर कीप प्रैक्टिसिंग नासाग्र मुद्रा. प्राणायाम का सबसे बड़ा एक ही रीजन है वो प्राणायाम आपके शरीर बेनिफिशियल होगा जब आपकी अवेयरनेस उसके साथ होगी.
1: यानी कि पूरा जुड़ाव होना चाहिए.
0: बिल्कुल आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर की वो श्वास कहाँ से निकल रही है कहाँ तक जा रही है. आपको A to Z एक्टिविटी आपकी बॉडी की फील होनी चाहिए. आप किस तरह की सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग प्राणायाम. आप जब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं तो राइट से आप इनहेल कर रहे हैं या उल्टा छोड़ रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्कल कम्प्लीट हो रहा है कि नहीं.
1: यानी ध्यान से तो प्राणायाम करें. और खाना खाने के कितने घंटे बाद हम
0: कोशिश कीजिए आप आधे घंटे से एक घंटे का डिफरेंस तो रखिए. अगर बिल्कुल नहीं रख पाते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे का तो रखिए. 20-25 मिनट का डिफरेंस रख के फिर आप प्राणायाम तो कर सकते हैं. व्यायाम करने के लिए अगर आपने पूरा खाना खाया है आपका अपने
1: वैसे तो कहते हैं खाना पचने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर हम व्यायाम की अगर
0: पूरा खाना लिया है तो फिर आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए. पर हाँ आपने सिर्फ डिनर किया है
1: हल्का खाना
0: अगेन कहते हैं कि डिनर में कम खाना चाहिए तो डिनर आपका डिपेंड करता है. बहुत फैमिलीज अब ऐसी हैं कि पूरे दिन का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एंड में ही रात में ही सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं तब वो उल्टा हेवी खाते हैं. तो अगर ऐसा कुछ है आप ऐसी कंडीशन में हैं तो पहले आप अपने दिनचर्या को सुधारिए. पहले आप अपना डाइट को आप मेंटेन कीजिए फिर आप धीरे धीरे अपने व्यायाम को भी शिफ्ट कर सकते हैं.
1: तो अगर हम ये मानते हैं कि उसने 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया तो 1.5-2 घंटे बाद अगर वो चाहें तो रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 जो आप बता रही हैं प्राणायाम और योग निंद्रा मैं चाह रही थी कि उसके बारे में अगर आप बताएं. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है.
0: इवन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है. सही तरीके से सोने का तरीका समझ सकते हैं
1: जी.
0: कि आपकी अवेयरनेस आपके सोते टाइम भी आपके साथ हो. उसे आप कच्ची नींद भी नहीं कहेंगे कि जैसे किसी ने भी एकदम से आपको टच किया या आपको आवाज लगाई तो आप झटके से उठ गए. नहीं अवेयरनेस से मेरा कहने का मतलब था सोते समय आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए. आप अपने मेंटल थॉट्स पर ध्यान दीजिए. किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं रखना है उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है.
1: कई बार ऐसा होता है ना नींद आती है लेकिन हम सवेरे जो है वो ताजापन महसूस नहीं करते. हमें लगता है कि बड़ा रात को बहुत से सपने आए हम कसवसाते रहे परेशान रहे ढंग से नींद नहीं आई अभी भी वो तनाव लेकर उठ रहे हैं. तो शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रही हैं कि नींद हो पर भरपूर हो.
0: बिल्कुल कहते हैं पूरे दिन में एक बार सोचे कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया पर उसको सोच के वहीं छोड़ दीजिए. फिर आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छी और शांत नींद आए हैप्पीली सोएं. तो उसके लिए आप 5 मिनट भी अगर आप प्राणायाम करके सोते हैं फिर आप लेटने के बाद शवासन में लेटकर फोन नहीं चलाना है तो उससे आपको बहुत शांत और अच्छी नींद 5 मिनट के अंदर ही आ जाएगी. क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि उनको नींद बहुत देर में आती है वो नहीं होगा. आपको टाइम से अच्छी नींद आएगी तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे
1: जी. और जब हम ताजगी की बात करते हैं तो और मन शांत की बात करते हैं तो संगीत भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है सुनना. तो क्यों ना योग की तो बातें करेंगे आगे लेकिन चलते चलते एक गीत सुन लेते हैं यहाँ पर.
0: बिल्कुल बिल्कुल. मधुबन

0: तो अभी हम बात कर रहे थे जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपने बताया कि योग निद्रा और बातचीत की, इवन हम सोने से पहले भी चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद। इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप योग प्रशिक्षक देविका से बातचीत सुन रहे थे। रश्मि कुकरेती जी बातचीत कर रही थी इनसे, योग के बारे में सरल बातें, सरल नियम आप जान रहे थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कि जो आपके घर की चार दीवारी के भीतर हर वक्त चल रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकती। जी हाँ, वो आपके घर का वाईफाई है। आज के दौर में वाईफाई सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं, बल्कि इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है, आपकी तस्वीरें जुड़ी हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है और आपकी निजी जानकारियां भी इससे जुड़ी हैं। भारत में साइबर क्राइम के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अधिकतर साइबर हमले असुरक्षित होम नेटवर्क के जरिए होते हैं, यानी आपके घर में जो वाईफाई लगा है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर के वाईफाई को सुरक्षित कैसे बनाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है पासवर्ड। दोस्तों, अगर आपके राउटर का पासवर्ड अभी भी 1234567 है और आपका नाम है या आपकी जन्म तिथि है, तो समझ लीजिए आपका दरवाजा तो खुला ही हुआ है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड रखिए जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर्स हो। दूसरी बात, अपने राउटर की सेटिंग में जाकर नेटवर्क का नाम यानी SSID बदल दीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट नाम हैकर्स को आसानी से बता देता है कि किस कंपनी का राउटर है और उसकी कमजोरियां क्या हैं। तीसरी बात, अपने राउटर में VPA3 या WPA2 एनक्रिप्शन जरूर चालू रखिए, क्योंकि ये आपके डेटा को एक सुरक्षा कवच देता है। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी उपायों की। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्हें आपका मुख्य वाईफाई पासवर्ड देने की बजाय आप राउटर में गेस्ट नेटवर्क यानी अतिथि नेटवर्क चालू कीजिए। यह सुविधा लगभग आजकल हर आधुनिक राउटर में होती ही है और इससे आपका मुख्य नेटवर्क जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हर 3 महीने या 6 महीने में अपने वाईफाई का पासवर्ड बदलने की आदत डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि अपने राउटर का फर्मवेयर यानी उसका सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि कंपनियां इन अपडेट में सुरक्षा की कमियां दूर करती हैं। तो दोस्तों, घर का वाईफाई सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी है जितना घर का दरवाजा बंद रखना। डिजिटल जमाने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी निजी जानकारियां हैं और उनकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। इस बात को समझिए। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को साइबर खतरों से बचा सकती है। तो संजो रखिए अपने डिजिटल घर को।

और श्रोताओं, अब समय है आपकी कुछ मेल्स पढ़ने का। एक मेल अभी हमारे पास आई है, उग्रसेन यादव जी ने लिखी है नई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि आपको मेरा दिल से सप्रेम नमस्कार। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक तरह से एक ज्ञान की किताब हैं, और आज की जेनरेशन चाहे तो आधे से ज्यादा जीवन जीने की कला उनसे जान सकती है, अपने घर में अपने बुजुर्गों से। जीवन आसान हो जाएगा अगर इनकी बातों और इनके दिल की बताए हुए गुरों पर गौर किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसके साथ ही हमें एक मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का। एक मेल हमको लिखा है गौरी शंकर जी ने, और ये लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेल हमें राजू अग्रवाल जी ने लिखा है, ये भी बुजुर्गों की बात पर लिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने बताया था कि बुजुर्गों से दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस है। तो इन्होंने लिखा है कि जो बुजुर्गों के लिए अगर कुछ बच्चे करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों के घर में मार्बल न लगाएं, क्योंकि इससे फिसलने का डर रहता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। तो प्रोग्राम तो हमेशा अच्छा होता ही है, बस ये एक प्रार्थना है जो हमारी आप सब तक सुनवा दें। और एक हमें गौरी शंकर जी ने एक मेल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब घर की जिम्मेदारियां बड़े ही निभाते हैं तो कामयाबी भी मिलती है, और इसीलिए बच्चों को बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। और अब समय समाप्ति का है, तो श्रुतिपुरी को आज का घर आंगन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर

0: सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar,

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें कहा जाता था मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी, यानी उस दौर में उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की चर्चा हर तरफ थी। और सोने पे सुहागा ये दोस्तों कि

मन तो मेरा भी अंगड़ाई लेता है जब भी मैं ये गाने सुनती हूँ। मुझे ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी गाने आज के बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि एकदम अलग ही दुनिया में आज आपको लेकर जाने वाली हूँ मैं। दोस्तों, ये गाना आपने सुना सुरैया की आवाज में। संगीतकार थे नौशाद और फिल्म का नाम था अनमोल घड़ी। जी हाँ दोस्तों, सुरैया मशहूर थी और कितनी ज्यादा मशहूर थी इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े फैन थे उनके जालंधर से। वो बारात लेकर उनके घर पहुंच गए और मुंह दिखाई में 2 लाख रुपए के गहने भी लेकर आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में 2 लाख रुपए के गहनों की क्या कीमत रही होगी, क्या मतलब जलवा रहा होगा सुरैया का। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि सुरैया के घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसा दीवाना आ ही जाता था जो उनसे शादी की ख्वाहिश रखता था। सुरैया से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको हैं बतानी, लेकिन उससे पहले गाना, कहीं ना जाना।

प्यार तो किसी को भी हो जाएगा इनकी खूबसूरत आवाज को सुनने के बाद। दोस्तों, सुरैया की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना, शमा फिल्म से, जिसे संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। आज हम सुरैया की बातें कर रहे हैं, शायद कुछ बातें आप जानते हो, शायद कुछ न भी जानते हो। दोस्तों, सुरैया का जन्म 15 जून 1925 में हुआ था। उनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। फिल्मों में उन्हें सुरैया के नाम से जाना गया। दोस्तों, सुरैया 1 साल की थी जब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्हें 2 ऐसे दोस्त मिले जो हिंदी सिनेमा के आइकन रहे। एक थे राज कपूर और दूसरे थे संगीतकार मदन मोहन। सुरैया के ये जो बचपन के दोस्त थे, राज कपूर और मदन मोहन, ये सभी के सभी यानी कि सुरैया के साथ ये बचपन में आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाया करते थे। यही वो मंच था जहां से सुरैया को भी रास्ता मिला हिंदी फिल्मों में गाने का।

0: दिल लगी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, सुरैया और शाम की आवाज में संगीतकार थे नौशाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें हो रही हैं सुरैया की।

दर्द फिल्म का एक गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में। और दोस्तों, आज सुरैया के बारे में हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, शायद आप जानते हों, शायद आप न भी जानते हों। सुरैया के एक्टिंग करियर की अगर हम बात करें तो एक्टिंग करियर की शुरुआत 1936 में ही हो गई थी। उन्होंने जद्दन बाई की फिल्म मैडम फैशन में बाल कलाकार के तौर पर पहली बार काम किया था, लेकिन रोल काफी छोटा था तो कुछ खास पहचान उन्हें मिल नहीं पाई। सुरैया के एक्टिंग करियर को आगे ले जाने में उनके मामा एम जहूर का खासा योगदान रहा। वो एक मशहूर विलेन थे अपने जमाने के, और उन दिनों फिल्मकार नानू भाई वकील की एक फिल्म ताजमहल में काम भी कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एम जहूर सुरैया को लेकर फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं और फिर सुरैया को मिलवाते हैं नानू भाई से। अब नानू भाई सुरैया की खूबसूरती और मासूमियत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तुरंत उन्हें मुमताज महल के किरदार के लिए चुन लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सुरैया को अपना पहला लीड रोल मिला था।

प्यार की जीत फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में। इस गाने को म्यूजिक दिया था हुसन लाल भगतराम ने। दोस्तों, गायकी की अगर बात करें तो गायकी में सुरैया को पहला मौका संगीतकार नौशाद साहब ने दिया था। उन्होंने सुरैया को आकाशवाणी पर गाते हुए सुना और फिल्म शारदा के एक गाने के लिए उन्हें चुन लिया। उस वक्त सुरैया महज 13 साल की थी। नौशाद ने गायकी में सुरैया के मेंटोर की तरह काम किया और उन्हें खूब सिखाया। सुरैया ने अपने सबसे बेहतरीन गाने नौशाद साहब के साथ ही गाए हैं, जैसे कि अनमोल घड़ी, दर्द, दास्तां और दिल लगी। इन सब म्यूजिकली हिट फिल्मों के जो गाने हैं वो नौशाद साहब ने सुरैया से गवाए थे और ये आइकॉनिक माने जाते हैं। इसके बाद सुरैया प्लेबैक सिंगिंग में एक जाना पहचाना नाम बन गई थी। वैसे दोस्तों, अब मैं जो गाना आपको सुनाने वाली हूं, इस गाने को सुनने के बाद सुरैया की आवाज से तो मुझे मोहब्बत हो ही गई थी, साथ ही साथ में एक होता ना फैन बन जाना किसी का, वो फैन बन गई थी मैं इस गाने में। सुरैया के चेहरे पर नकाब है और बड़ी बड़ी सी उनकी कजरारी सी आंखें दिखाई दे रही हैं। कभी मौका मिले तो रुस्तम सोहराब का ये गाना आप सुनना भी और देखना भी।

रुस्तम सोहराब फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है कमर जलालाबादी ने और आवाज दी है सुरैया ने, ये आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, मिलते हैं आपसे और बातें करेंगे सुरैया।

0: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
0: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुरैया की। दोस्तों, सुरैया ने अपनी ज्यादातर फिल्मों के गीत खुद ही गाए हैं और ये कमाल ही था कि उनकी आवाज की जितनी तारीफ हुआ करती थी, उनकी एक्टिंग की भी उतनी ही तारीफें सुनने को मिला करती थी। हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी दूसरी अभिनेत्री रही हो जिन्हें अभिनय और गायन दोनों में बराबर प्रसिद्धि मिली थी। सुरैया सुपरस्टार कही जाती थी और कई नामों से उन्हें पुकारा जाता था, जैसे कि मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी। जमाने में ऐसा कोई भी संगीतकार नहीं था जिसकी ख्वाहिश ना हो उनके साथ गाने गाने की, तो बड़े से बड़े संगीतकार के साथ उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए और बड़े से बड़े अभिनेता के साथ उनकी फिल्में आईं।

लोग पहले से सुरैया को सुनते आ रहे हैं, वो इस फिल्म का नाम सुनते ही उनके दिल में धक धक शुरू हो गई होगी कि हाँ भाई, मिर्जा गालिब तो उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म रही है, उनके करियर में माइलस्टोन मानी जाती है। दोस्तों, पूरे देश में उनके जो मिर्जा गालिब वाला किरदार था उसे बेहद तारीफें मिली थी, बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनकी तारीफ की थी। साल 1940 से 1950 तक लगभग हर दूसरा गीत सुरैया की आवाज में सुना जाने लगा था। जी हाँ, उनकी आवाज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी मिर्जा गालिब के बाद। तो चलो मिर्जा गालिब की ये गजल सुनते हैं।

राजपूत फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में। और दोस्तों अब दिल थाम लीजिए, जी हाँ, एक बहुत ही खास गीत, एक बहुत ही खास यूं कि ये गजल मैं आपको सुनाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। दोस्तों अपने संपूर्ण करियर में सुरैया ने करीब 70 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्में क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे कि बड़ी बहन, अनमोल घड़ी, प्यार की जीत, रुस्तम सोहरा, परवाना और मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब

मिर्जा गालिब फिल्म की ये गजल आपने सुनी सुरैया की आवाज में। दोस्तों, सुरैया की बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत मुस्कान और दिलकश आवाज उन्हें एक अलग ही शख्सियत बनाती है। वो बहुत ही अलग थी, बहुत ज्यादा। कहना मुश्किल है कि सिंगर ज्यादा अच्छी थी या फिर एक्ट्रेस, खूबसूरत उनकी आवाज ज्यादा थी या फिर वो खुद ज्यादा हसीन थी। पूरी दुनिया में सुरैया के चाहने वाले थे, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े कलाकार भी शामिल थे, जैसे कि धर्मेंद्र, साहित्यकार इस्मत चुगताई, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, देव आनंद साहब, इफ्तिखार रहमान और भी बहुत सारे लोग थे जो सुरैया को बहुत बहुत पसंद किया करते थे। एक और बात सुरैया के बारे में कही जाती है कि उनके दिल में दूसरी एक्ट्रेसेस को लेके किसी भी तरह की जो जलन होती है ना एक दूसरे को देखकर, वो नहीं थी। उनकी सहेलियां बहुत थी इंडस्ट्री में। दोस्तों, सुरैया हिंदी सिनेमा के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें बहुत सम्मान मिले। 1996 में उन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1999 में बिमल रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट से उन्हें नवाजा गया। 1998 में साहित्य अकादमी और उर्दू अकेडमी पुरस्कार उन्हें मिले। ये मिर्जा गालिब के लिए उन्हें

मिला था और 1955 में उन्हें मिर्जा गालिब के लिए प्रेसिडेंट्स उनकी फिल्म को मिर्जा गालिब जो फिल्म थी उसके लिए प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला था और साल 2003 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड उन्हें दिया गया था। दोस्तों

0: दोस्तों, सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाज में शमा परवाना फिल्म का गीत आपने सुना बिल्कुल अभी। तो वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की है मैंने, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा आपको। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का। आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ आप यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बराती सलावा में सलावाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतवार से एल नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सलवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में सलवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम मोदी को सलवाकिया के उनके हम मनसब की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और सलवाकिया के रिश्तों को मजीद उसत देने और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के नए इम्कान तलाश करने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम मोदी सदर पीटर पिल्लीगेरिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद सलवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगेरिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीको के साथ सूदमंद मुजाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में सलवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का यह पहला दौरा है। वजीर आजम का यह दौरा पिछले साल अप्रैल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सलवाकिया के दौरे और सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगेरिनी के रवां साल फरवरी में भारत में मुनाकिदा एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत के बाद हो रहा है। यह दौरा तिजारत, सरमायाकारी, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और सलवाकिया के दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा करता है। 52वां G7 सरबराह इजलास आज फ्रांस के शहर ईविया में शुरू हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब एक अहम मुस्बत वाकया ये पेश आया है कि अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर जाता है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। एक मुशरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के लीडरों ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हुरमुज को फौरी तौर पर फिर से खोलना और बहरी जहाजों की बिला रूकावट आमदोरफ्त जरूरी है। फ्रांस के शहर ईविया के साथ साथ जनेवा और लेक जनेवा खित्ते में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो बुध के रोज तक जारी रहेगी। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकाम के अतराब पूरे इलाके को रेड और ब्लू जोन में बांटा गया है और वहां QR कोड पर मबनी कंट्रोल निजाम के जरिए दाखिल होने को मुंजबित किया जा रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाजाबता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इन मुल्कों में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के सुदूर भी इसमें शामिल होंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को साझेदार मुल्कों की हैसियत से सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदु किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदु किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की सदारत में मुनक्किद होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस ने रवा साल के लिए चंद अहम तरजीहात का इंतखाब किया है। वसी तनाजुर में इनमें आलमी मईशत में हद से ज्यादा मौजूदा अहम तवाजुन को कम करना, मुश्तरका इक्तसादी तरक्की को फरोग देना और बैनुल अक्वामी शराकत दारों को मजबूत बनाना शामिल है। इसके अलावा अहम मादनियात और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाने, ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने और बड़े जुग्राफियाई और सियासी बहरान के हल पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे। वजीर आजम ये दौरा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। ये दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आलमी रहनुमाओं के साथ ऐसे अहम उमूर पर बातचीत करने का मौका फराहम होगा जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे आलमी खित्ताए जनूब के लिए भी अहम है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की ये 13वीं और वजीर आजम मोदी की मुसलसल 7वीं शिरकत होगी। फ्रांस के शहर एवियन से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर गुजरता है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया और कहा कि अमरीका ईरान की बंदरगाहों पर अपनी बहरिया की नाकाबंदी भी खत्म कर देगा। इस अमन समझौते पर स्विट्जरलैंड में इस महीने की 19 तारीख को दस्तखत किए जाएंगे। सर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत होने के बाद अबनाए हुरमुज को जुमे को ही खोल दिया जाएगा। मजकूरा समझौते में कहा गया है कि ईरान के एटमी अफजूदगी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान बातचीत करेंगे। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि लबनान समेत सभी महाजों पर जंग और फौजी कार्रवाई मुस्तकिल तौर पर रोक दी जाएगी और यह सिलसिला आज रात से शुरू हो जाएगा। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है जिसकी वजह से दुनिया भर में संगीन इक्तसादी मुजमरात

0: मुखातब हुए हैं और कई मुल्कों में लोगों की अमवात हुई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त हो सकेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने कहा है कि मुल्क के मुतवस्सित तबके ने बेशुमार तरीकों से मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा किया है और एनडीए सरकार उनकी उमंगों की तकमील के लिए काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान हुक्मरानी में आम शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद है और मौसम के एतबार से एल नीनो के असरात के बावजूद गजाई अशिया की कोई किल्लत नहीं होगी। आज नई दिल्ली में माइंड माइंड सरबरा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की बारिश नॉर्मल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में वाके नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं, जो मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम संग मील है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के एक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 1-5 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन के खिलाड़ियों ने वक्फे के बाद के खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा और आसानी से जीत हासिल की। आज के दिगर मैचों में अमेरिका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी बराती सलवा में सलवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबराह इजलास फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम ने मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा प्वाइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतबार से नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. Details from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend a lunch hosted by Slovak Prime Minister Fico in a short while. Both Prime Ministers will lay a wreath

0: WPI-based inflation accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त

0: करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़

0: 20 लाख यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है उन्नत किसान। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं रजनीश
1: जी। नमस्कार। और देखिए नीरा, हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां अपने किसान भाई बहनों के लिए लेके आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कि नित्य नए क्या विषय है कृषि से संबंधित और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेके आते हैं। और आज का जो विषय है वो भी ऐसा ही है कि टिकाऊ खेती में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान।
0: और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट जो आप तक पहुंचाएंगे पूर्ण जानकारी। वो हैं डॉक्टर रुचि बंसल, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि विषय है कि जैव विविधता है ना, बायोडायवर्सिटी, तो ये बड़ा विस्तृत सा विषय है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैव विविधता होती क्या है।
2: जी, तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी, कि कितने तरह के जीव हमारे आसपास पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम खेती की बात करें तो खेती के संदर्भ में यदि हम देखें तो ना ये सिर्फ

0: सिर्फ हमारे जीवों में पाए जाने वाली विविधता है, बल्कि वो जैसे वातावरण में रहते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, उसमें जो पाए जाने वाली विविधता है वो भी जैव विविधता में आती है। अब जैसे मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे हमारी कुछ फसलें हैं जो कम पानी में होती हैं, थोड़ी सूखे वातावरण में होती हैं, जलवायु में होती हैं, जबकि कुछ को बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। तो इनका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अलग अलग होता है दोनों में, चाहे मिट्टी में चाहे वातावरण में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो अलग होते हैं। तो वो सभी जो हैं वो जैव विविधता में योगदान करते हैं और वो सभी कहीं ना कहीं हमारी कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1: तो जैसे डॉक्टर साहब आपने जैव विविधता के बारे में बताया, अब आज जैसा कि हमारा विषय है टिकाऊ खेती में जैव विविधता, तो इससे पहले कि हम इन दोनों विषयों को जोड़ें तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि टिकाऊ खेती क्या होती है।
0: बिल्कुल जी। तो देखिए, खेती हम सभी, हमारे सभी किसान भाई बहन जानते हैं कि खेती जो हम करते हैं वो अच्छी उत्पादकता पाने के लिए करते हैं
1: जी,
0: ठीक है। लेकिन यदि इस उत्पादकता के साथ में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी है, हमारा जो वातावरण है, उसका, उसको भी हम समन्वित करके चलें, उसका भी हम ध्यान रखें जी, तो जो हमारी खेती है वो जो टिकाऊ खेती बन जाती है। माने कि आपकी मिट्टी ज्यादा समय तक उर्वरक रहेगी, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारी जो जलवायु है वो ज्यादा समय तक अच्छी रहेगी। तो इन सबको मिला के चलना ही टिकाऊ खेती है। उत्पादकता के साथ में हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है
2: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर अब जैसे कि रजनीश ने कहा कि अगर अब इन दोनों विषयों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो क्या निकल करके आता है?
0: देखिए, जैसे मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम खेती के लिए उर्वरक का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, और हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उस जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको हम जो एक हर जो हमारी क्रॉप है, फसल है, उसके लिए एक उचित मात्रा है जिसमें हमें इस्तेमाल करना है
2: जी।
0: लेकिन वो उचित मात्रा आपकी मिट्टी में कितना वो पोषक तत्व मौजूद है उस पर भी निर्भर करती है। तो मैंने ऐसा नहीं करना है कि जो मेरा उर्वरक है वो जितना रिकमेंडेड डोज है वो डाल देना है। मैंने ये भी देखना है कि पहले से मिट्टी में कितना पोषक तत्व है। यदि वो पहले से अधिक मात्रा में, मान लीजिए नाइट्रोजन की ही हम बात करें, यदि नाइट्रोजन पहले से ही प्रचुर मात्रा में मिट्टी में उपस्थित है तो आपको ऊपर से और अधिक नाइट्रोजन नहीं डालना है
2: जी।
0: तो अब ये कैसे जुड़ता है हमारी टिकाऊ खेती से? इसमें क्या है कि यदि आप अधिक वही फर्टिलाइजर की मात्रा डाल देंगे तो जो वही नाइट्रोजन है वो आपके पौधे के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन आपकी मिट्टी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, आपकी मिट्टी को खराब कर देगा। तो हमें पौधे का तो ध्यान रखना ही है, साथ में हमें अपनी मिट्टी का भी ध्यान रखना है। अब ये जो अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की, ना ये सिर्फ आपकी मिट्टी खराब करेगी, जब बारिश होता है तो क्या होता है, ये जो अधिक मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन है मिट्टी में, या मैं किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर की बात करूं, फास्फोरस भी हो सकता है या कोई और पोषक तत्व भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, वो कई बार रन ऑफ की वजह से बह के या लीचिंग के माध्यम से नीचे तक मिट्टी में चला जाता है और वो धीरे धीरे हमारे पानी को भी प्रदूषित करने लगता है
1: जी।
0: तो इस तरह से अब हमने डाला तो वो फर्टिलाइजर था अपने पौधे की वृद्धि के लिए, लेकिन आप देखिए उसने मिट्टी को भी प्रदूषित किया और ना कहीं ना कहीं हमारे पानी को भी प्रदूषित किया। अब वो पानी ना सिर्फ जो जीव जंतु उसे पीते हैं उसको प्रभावित करता है, बल्कि जो मछलियां उसमें जलचर जो भी रहते हैं उनको भी प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं यदि हम उस जल का उपयोग करते हैं तो हम भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा किसी भी इनपुट का उपयोग है ये पूरे एक तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो जो हमें अपनी कृषि करनी है वो हमें पैदावार तो अच्छी लेनी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा तंत्र है ये भी स्वस्थ रहे, क्योंकि यदि ये स्वस्थ रहेगा लंबे समय तक तभी हम अच्छी पैदावार ले पाएंगे।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छे से बताया कि किस तरह से हमें एक संतुलन बनाना है सब चीजों में। तो भाई, कोई जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे किसान भाई बहन, टिकाऊ खेती में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान, इस विषय पर यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से इस विषय पर, तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के जो श्रोताओं के लिए जो एसटीडी कोड है वो है 011 और हमारा फोन नंबर है 23 42 10 81। दूसरा नंबर है 23 42 10 83 2342-1083। तो इस फोन नंबर पर आप अपनी जो भी जिज्ञासा है उसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उसका सीधा आपको जवाब देंगे।
2: बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं टिकाऊ खेती में जैव

0: विविधता का महत्वपूर्ण योगदान पर। तो डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे हैं जैव विविधता की, तो ये अगर हम बात करें कि जैविक खेती की भी बात हो गई, बायोडायवर्सिटी की भी बात हो गई, तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं तो कैसे ये सामने आता है?
1: जी, जैसे मैं आप इसके एक तरह से इसके लाभ मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने मिट्टी की उर्वरकता आपको बताई है ना, तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बहुत लंबे समय तक बने रहती है
2: जी।
1: और आपके

0: हमारे वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर देती है, तो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको रिच बनाती है नाइट्रोजन में। इसी तरह से यदि हम फास्फोरस की बात करें, आप जो भी जब आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, एमओपी डालते हैं, तो क्या होता है, वो जो फर्टिलाइजर है उसमें फास्फोरस का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सॉइल में और जो कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं उनके साथ में बाइंड हो जाता है और आपके पौधे को नहीं मिलता। सिर्फ जो उसका बहुत ही कम हिस्सा होता है जो पौधा अपनी वृद्धि के लिए या पैदावार के लिए इस्तेमाल कर पाता है। तो इसी तरह से यदि हम फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया का उपयोग करें तो वो क्या करते हैं कि जो आपकी मिट्टी में पहले से बाइंड फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाता है और जो पहले से पड़ी हुई अतिरिक्त फास्फोरस है वो आपका पौधा ले सकता है
1: जी।
0: है ना, तो ये तरीके हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बहुत सारे, जैसे हमने अभी तक मिट्टी की बात की, पौधों की बात की, लेकिन हमने कीटों की बात नहीं की है ना। ऐसे ही मधुमक्खियों की यदि हम बात करें, तितलियां हैं
2: जिसे हम और मित्र कीट भी कहते हैं।
0: जी बिल्कुल, मित्र कीट हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये एक तो जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, परागण की क्रिया, इसके लिए बहुत ही जरूरी है
1: जी,
0: है ना। इसी की वजह से इतनी जो विविधता है ये बनी हुई है। और
2: डॉक्टर साहब हम और बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: हम बांसवाड़ा से बोल रहे हैं।
2: नाम बताइए।
3: नाम एक उपाध्याय।
2: उपाध्याय जी, अपना सवाल पूछिए।
3: ये मिट्टी हमारे गमलों में कैसे स्वस्थ रह सकती है? बढ़िया,
0: बहुत बढ़िया।
3: मिट्टी
0: जी, हमारे जी जी जी, आप इसमें FYM या वर्मी कंपोस्ट या जो भी इस तरह की जैविक खाद है ना, आप जैविक खाद का प्रयोग करें, है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ उसमें भी सिर्फ जो आपने केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज करना है, आपने उसमें भी जैविक खाद का प्रयोग करना है, बार बार उसकी गुड़ाई करनी है सीजन के बाद में उसको, मतलब वो वही मिट्टी आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी है। यदि करनी है तो उसमें थोड़ा सा जैविक खाद मिला के और उसको तब आपने इस्तेमाल करना है दोबारा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, क्या पूछना चाहेंगे, क्या प्रश्न है आज?
4: हम ये जानना चाहते हैं कि जो जैव विविधता आप बता रहे हैं, इससे क्या मिट्टी के कटाव को किस तरह से रोक सकते हैं या इससे क्या हमको फायदा होता है?
0: जी देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तो जो आपके बॉर्डर हैं उन पे आपको, जैसे पुराने जमाने में होता था कि जो खेत होते थे उनके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ का मेड़ या झाड़ियों का मेड़ लगाया जाता था, है ना। तो उससे क्या होता था, जब आंधी आती थी तो कटाव थोड़ा रुक जाता था
2: जी।
0: तो आपको अभी भी वही चीजें फॉलो करनी है कि उसी तरह की जो झाड़ियां हैं या जो पेड़ की चारों तरफ से एक बाउंड्री है वो बनाएं, तो उससे थोड़ा कटाव रोकने में आपको ये उपयोगी होगा
2: जी। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जैसे कि आप मित्र कीटों के बारे में बता रही थी कि मधुमक्खी है, तो ये किस तरह से हमारी खेती में उपयोगी होते हैं, इस बारे में आप बता रहे हैं?
0: देखिए जैसे मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी तो बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है
1: जी,
0: क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारे पौधों की प्रजातियां हैं उसमें परागरण के लिए चाहिए है, इसके बिना परागरण ही नहीं होगा। अगर परागरण नहीं होगा तो जो है हमारा जो फूल है, फूल नहीं खिलेगा, बीज नहीं बनेगा
2: जी।
0: तो ये उसके लिए चाहिए, इसीलिए विभिन्न तरह की तितलियां हैं, पक्षी हैं और इसके कीड़े हैं। और इसके अतिरिक्त हम और यदि कुछ और उपयोगी कीड़ों की बात करें तो वो ऐसे भी हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स को खाते हैं
2: जी,
0: है ना
2: जी।
0: जो माने हमारे उनके जो शत्रु हैं, जो इस तरह के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनके शत्रु हैं, तो ये हमारी फसलों की रक्षा भी करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रद्युम्न वर्मा है और मैं खदौली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: जी आज क्या पूछना चाहते हैं?
5: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि डाइवर्सिटी के बारे में
1: जी,
5: ये तो इन्होंने बेसिकली खेती के लिए बताया है। हमारे यहाँ जो है ना कुछ पार्क भी है, डाइवर्सिटी पार्क लिखा हुआ उस पे,
2: जी,
5: तो उसका क्या मतलब है, वो भी एक बार क्लियर करा दें थोड़ा सा।
0: जी बिल्कुल, देखिए ये जो डाइवर्सिटी पार्क है, जैसे अगर हम खेती की बात करें तो हम अधिकतर फसलों की बात करते हैं, है ना, हम उन फसलों की बात करते हैं जिन्हें हम खाने के लिए या

0: उपयोग के लिए या आप बेचते होंगे बाहर, उसके लिए उगाते हैं. लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं ऐसी, उसमें पेड़ों की और आपकी फसलों की जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सारी प्रिजर्व होती है. जैसे बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो अभी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके बहुत ही कम जो प्रजातियां हैं वो उपलब्ध हैं, तो उनको संरक्षित करने का ये एक तरीका है ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं. और ये जो होते हैं ये किसी भी एक भौगोलिक जो उसकी लोकेशन है वहीं पे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं. मतलब ये हर जगह नहीं बनाए जा सकते, हर प्रजाति के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है. तो वो वातावरण जहां पाया जाता है, वो जलवायु जहां पाई जाती है, उसके अनुरूप ही ये बायोडाइवर्सिटी पार्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं. तो कंट्री में ऐसे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं
1: जी. और देखिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें बता रहे हैं, और साथ ही साथ हमने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनको हम नित्य नई जानकारी देते रहते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है. और नीरा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 12 और 13 जून को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई. और इस बैठक में अनेक विषयों पर जो कृषि से संबंधित है उन पर चर्चा हुई, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, कृषि व्यापार और सहयोग, साथ ही साथ नवीनीकरण खेती, जलवायु के अनुकूल और सहवानीय कृषि, इसी तरह से कि कृषि के अंदर किस तरह से हम सहयोग करके सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, कृषि और खाद्य प्रणाली को किस तरह से भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसमें जितने भी ब्रिक्स के जो कृषि मंत्री आए थे उनके साथ इस बैठक में बड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. और इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बैठक को संबोधित किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं.
2: भारत सरकार और भारत के नागरिकों की ओर से मैं आप सभी का ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूं. मुझे उम्मीद है कि कल मांडवगढ़ की यात्रा आप सबको बहुत पसंद आई होगी. अरे, आपके लिए सुखद और अविस्मरणीय अनुभव रहा होगा. जैसा कि मैंने कहा था, विश्व कल्याण, आपसी सहयोग और साझा समृद्धि भारत की सोच और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. भारत सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ता है. अर्थात हमारा विश्वास केवल अपने कल्याण में नहीं है बल्कि सबके कल्याण में है, केवल अपनी समृद्धि में नहीं बल्कि साझा समृद्धि में है. यही आदर्श आज भी वैश्विक सहयोग और मानव कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन करता है.
1: तो किस तरह से वैश्विक सहयोग के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस बात को यहां इंगित किया. और मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अब कृषि के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा.
3: बिल्कुल रजनीश, क्योंकि कहते हैं कि जब युवा किसी भी क्षेत्र के साथ जुड़ जाता है तो फिर उस क्षेत्र का तो आगे बढ़ना जाहिर सी बात है और देश तो तरक्की करेगा ही करेगा. क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा भी हैं, युवा किसान हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नई नई तकनीक जो है वो आ रही है, नई नई खेती में अनुसंधान किए जा रहे हैं और हमारे जो किसान हैं, हमारा देश है, खुशहाल हो रहा है. और यही कामना करते हैं कि इन जो हमारे कार्यक्रम हैं खेती किसानी से जुड़े हुए, इनके जरिए हम नई नई जानकारी अपने श्रोताओं तक, अपने किसान भाई बहनों तक पहुंचाते रहें. और यूं ही पूर्ण जानकारी के साथ हमारे एक्सपर्ट भी हमारे स्टूडियो में होते हैं और साथ ही साथ होती है एक से बढ़कर एक जानकारी.
1: और जैसा कि आज का विषय है जैव विविधता,
3: बिल्कुल,
1: तो डॉक्टर साहब अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर खेती में जैसे आपने कहा कि बहुत ही जरूरी है जैव विविधता, तो इसको बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं.
0: हाँ जी बिल्कुल. तो जैसे देखिए, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है हमारी जो स्थानीय किस्में हैं उनका संरक्षण, है ना. तो ऐसी अभी क्या है कि बहुत सारी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, ज्यादा पैदावार देने वाली जो वैरायटीज हैं, वो हमारे किसान भाई बहन वो उगाते हैं. तो इसके साथ में जो हमारी बहुत समय से चली आ रही किसी भी फसल की किस्में हैं, उनका क्या फायदा है कि वो कई बार हो सकता है कि उनकी पैदावार कम हो, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो कई बार इन हाई यील्डिंग वेराइटीज से ज्यादा होती है ना, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई बार उनका स्वाद बहुत अलग होता है, कई बार उनमें पोषक तत्व आयरन, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये ज्यादा मात्रा, विटामिन्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारी स्थानीय किस्में हैं, इनका संरक्षण करना और इनको लगाना, तो एक तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है पारंपरिक खेती या जैविक खेती जिसे हम कहेंगे
1: जी।
0: अधिक पैदावार लेने के लिए ये तो कहना मुश्किल है कि आप बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक तो चीज है कि आप इस केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उतना ही करें जितना आवश्यक है, और जहां आप इस केमिकल फर्टिलाइजर को आप जैविक खाद से रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आप वहां उसको जैविक खाद से रिप्लेस करें। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट ना मिले, कि आगे आने एकदम से आपको ज्यादा पैदावार ना मिले, हो सकता है थोड़ी कम मिले, लेकिन बहुत लंबे समय में आपकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहेगी, और इससे फिर हमारा जो पर्याय फिर साथ में हमारे पर्यावरण के साथ भी उसके लिए भी सहयोगी है। फिर हमारी जो बहुफसल प्रणाली है
1: जी,
0: यानी कि एक तो गया क्रॉप रोटेशन, अलग अलग तरह की फसलें लगाना, है ना, दल जैसे मैंने बताया तिलहन के साथ में या फिर अनाज वाली फसलों के साथ में दलहनी फसलों को डालना, तो और इसके साथ में मिलेट्स भी आप लगा सकते हैं, है ना। मिलेट्स का तो हम जानते ही हैं कि आजकल मिलेट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही रिच है, और हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग तो मिलेट्स ही खाया करते थे
3: जी।
0: तो इस तरह की फसलों को लगाना, फिर जो हमारे परागणकर्ता हैं, जैसा जानते ही हैं हम, मैंने कहा मधुमक्खियां हैं, उसके पालन को बढ़ावा देना, या तितलियां या कीट हैं, इनका भी संरक्षण करना। फिर इसके अतिरिक्त जो स्थानीय समुदाय हैं, मतलब जैसे हमारे छोटे छोटे किसान भाई या जगह जगह पे अलग छोटे छोटे पैचेस में जो अपने एरिया में लगाते हैं, उसको बनाए रखें, उसको छोड़े नहीं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में चावल की ही हम बात करें तो बहुत तरीके का चावल पाया जाता है, रेड राइस पाया जाता है, कहीं पर रेड व्हीट होता है, तो ये क्या है कि ये न केवल क्वालिटी के लिए अच्छा है, बल्कि ये एक तरह से हमारी जो पारंपरिक खेती है उसको भी बढ़ावा देता है, और साथ में ये कृषि में जैव विविधता भी बढ़ाता है
1: जी।
0: तो हम जितनी जैव विविधता का मतलब है वैरायटी, जितनी वैरायटी हम अपनी खेती में डाल सकते हैं हम उतनी डालें, अपने खाने में डाल सकते हैं आप, जितनी वैरायटी अपनी खेती में डालेंगे, जितनी विविधता अपने खेत से निकालेंगे, शायद उतनी ही विविधता आपकी खाने की प्लेट में होगी
1: जी।
0: तो वो कहीं ना कहीं हमारी कृषि के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है
1: जी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जैव विविधता के बारे में बताया, तो क्या जैव विविधता में भी कुछ क्लासिफिकेशन है कि प्लांट बेस्ड जैव विविधता या पशुओं की जैव विविधता, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
0: हाँ जी बिल्कुल, देखिए फसलों की जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो इसमें आती है विभिन्न प्रकार की फसलें और उनकी अलग अलग किस्में
1: जी,
0: ठीक है ना, कि मान लीजिए गेहूं की हो गई, धान की हो गई, मिलेट्स की हो गई, दलहन की हो गई, तो इनकी बहुत तरीके की किस्में हैं। कुछ किस्में हैं सूखे क्षेत्रों के लिए, कुछ किस्में हैं अधिक लवणता वाले क्षेत्रों के लिए, कुछ किस्मों को कम पानी की जरूरत है, कुछ किस्में जो होती हैं अधिक तापमान में भी ग्रो कर जाती हैं, अच्छी पैदावार देती हैं। तो ये जितनी भी विविधता है ये है हमारी फसलों की विविधता, और यदि हम पशुओं की विविधता की बात करें तो ये है खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरह के जानवर, यानी कि जो हमारे किसान भाई बहनों का पशुधन है उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं, है ना, देसी गाय है
1: जी।
0: अब आप जानते विदेशी नस्लें हैं, तो इन सबकी भी पैदावार, इन सबकी भी दूध देने की जो क्षमता है वो अलग अलग है, तो इनकी नस्लें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी जो हमारी देसी नस्लें हैं उनका संरक्षण करना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा फसलों की जो विविधता है उसका संरक्षण करना
3: जी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है आपके माध्यम से, लेकिन रजनीश कभी कभी हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मनोरंजन का भी इंतजार करते हैं, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जब वो रेडियो सेट के पास बैठे हों तो जानकारी भी उन तक पहुंचे और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो, तो किना सुने एक लोकगीत
1: जी जरूर।

0: तो जैसा कि आज का विषय है टिकाऊ खेती में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान, तो डॉक्टर साहब आपने अभी पौधों की जैव विविधता के बारे में बताया, पशुओं की जैव विविधता के बारे में बताया, इसी तरह क्या मिट्टी में भी कोई डाइवर्सिटी होती है माइक्रोब्स की, और अगर ये होती है तो ये क्यों जरूरी है?
1: जी बिल्कुल, देखिए जो मिट्टी है उसकी जो संरचना है
2: जी,
1: वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो मिट्टी की अच्छी संरचना के लिए मिट्टी में पाए जाने वाली जैव विविधता, यानी कि जैसे उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंगाई पाए जाते हैं, माने कवक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो ये विभिन्न पोषक तत्व हैं जो या तो मिट्टी में पहले से मौजूद है या फिर हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू, खाद के थ्रू पौधे को देते हैं, मिट्टी को डालते हैं, उनको चक्रित करते हैं। चक्रित करते हैं माने कि वो पौधे को भी अवेलेबल बनाते हैं और साथ में उसको रिसाइकल करते हैं। तो ये जो मिट्टी में पाई जाने वाली जैव विविधता है ये मिट्टी की क्वालिटी के लिए बहुत ही जरूरी है और ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त जो केचुए हैं, केचुए का तो हम सभी जानते हैं कि केचुए को, हाँ जी, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है कि केचुआ जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसी तरह से ये जो वर्मी कंपोस्ट बनती है जो केचुआ बनाता है, इससे भी मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, उसमें एरिएशन इम्प्रूव होता है। मिट्टी में भी जो है वो मिट्टी के कणों के बीच में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि पौधे की जड़ों को ग्रो करने के लिए जरूरी होती है
0: जी।
1: तो ये जितने भी माइक्रोब्स हैं ये मिट्टी की संरचना, मिट्टी का एरिएशन और मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। और जब हम विभिन्न तरह की फसलें इस्तेमाल करते हैं
2: जी,
1: तो उससे क्या होता है कि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लंबे समय तक बनी रहती है। क्योंकि देखिए जो विभिन्न, यदि हम एक ही फसल को बार बार इस्तेमाल करेंगे, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे मक्का है, तो क्या होता है कि उस फसल की जो जरूरत है वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट की है, तो वो मिट्टी से वही न्यूट्रिएंट निकालता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उससे जो मिट्टी में जो पोषक तत्वों का संतुलन है वो खराब हो जाता है। अगर आप फसल चक्रण करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने फर्टिलाइजर दिया, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व दिए, लेकिन उसमें से कुछ पोषक तत्वों को एक फसल इस्तेमाल करेगी, कुछ पोषक तत्वों को दूसरी फसल इस्तेमाल करेगी, तो आपकी जो मिट्टी है उसमें इन पोषक तत्वों का संतुलन बना रहेगा। तो इसीलिए आपने फसल चक्रीकरण, फसल विविधीकरण का इस्तेमाल करना

0: और दूसरा जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी जगह कंपोस्ट और जैविक खाद का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना है।
1: डॉक्टर रुचि, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए
0: जी,
1: तो क्या जैव विविधता से उत्पादकता बढ़ सकती है, किसान की आमदनी बढ़ सकती है?
0: जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि देखिए उत्पादकता बढ़ना क्या है कि यदि हम उसे बहुत ही शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि मुझे चाहिए कि 6 महीने में तो मुझे बहुत अच्छी पैदावार मिल जाए, लेकिन 6 साल बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा
2: जी,
0: तो यदि हमें ये चाहिए है तब तो फिर वो उतना उत्पादकता मिलना तो मुश्किल है। लेकिन मैं अगर ये चाहती हूं कि हाँ मुझे ये उत्पादकता 6 साल तक या 60 साल तक या मेरी अगली आने वाली जनरेशन को भी मिलती रहे, तो मुझे इसके साथ में अपनी खेती के साथ में इस जैव विविधता का ध्यान रखना ही होगा।
1: यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर हम जैव विविधता को अपनाते हैं,
2: मतलब एक इंस्टेंट वाला नहीं है, लेकिन लाभ जरूर होगा और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य का लाभ होगा और देश खुशहाल होगा। डॉक्टर रुचि, आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में संयुक्त प्रेस वक्तव्य दे रहे हैं। श्री फ्रिट्ज़ो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री फ्रिट्ज़ो से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीका की नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया।

0: सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर था, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया था। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के दौरान पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संदेश भेज सकते हैं या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 9886886753 और हमारा ईमेल आईडी पे भी आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। और सबसे पहले जो संदेश हमें मिला है ये है महेश बोहरा का अजमेर राजस्थान से, और इन्होंने बात मौसम की है क्योंकि मौसम आजकल बहुत तेजी से बदल रहा है, तो मौसम फिल्म से इन्होंने एक गीत चुना है। प्यारा सा गीत है, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ मन भावन की।

कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। अगला संदेश हमें मिला है बल्ली मारान से। भेजने वाले हैं नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब। इनके बाद हमें संदेश मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का। और इनके अलावा जो संदेश हमें भेजा है वो है ग्राम रजौली, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके सभी परिवारजनों का। और साथ ही हमें संदेश मिला है महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब और बिहारी बाबू का। कहां से भेजा है ये संदेश इन्होंने? रामगढ़ कैंट से इनका पैगाम मिला और ये सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की।

स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें हरजिंदर भाटिया के साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का संदेश मिला। अगला पैगाम हमारे पास आया है सौराष्ट्र राजकोट से, जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी का। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजाफर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। इनके बाद हमें संदेश मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से इनका संदेश मिला और मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम कुमारी हमें संदेश भेज रही हैं।

बाद एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने संदेश भेजा और ये मुद्दत फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि काफी मुद्दत के बाद सुनाई देगा। गीत बहुत अच्छा है लेकिन कम सुनने में आता है, तो ये गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बरामकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का। इनके अलावा हमें संदेश भेजने वाले हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें जो पैगाम आया है वो है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, और भेजने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉ प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, खानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। इनके बाद संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का, और छीपा कॉलोनी खंडवा से हमें संदेश मिला है मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री का। इनके बाद हमें संदेश पहुंचा है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी और पुष्पेंद्र कुमार दूधी का। और इनके बाद हमें एक बहुत ही प्यारी सी कई पंक्तियां हमें लिखकर भेजी हैं, और ये भेजने वाले हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, इनका गीत हम आपको सुनवाते हैं जो इन्होंने फरमाइश भेजी थी। ये है जो गीत सुनना चाहते हैं शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए।

0: सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: इस ब्रेक के बाद जारी है आपका अपना आमन भावन, आपके अपने FM गोल्ड पर। संजय पाटिल, उषा पाटिल मलकापुर से संदेश भेजते हैं और कह रहे हैं कि छड़ी रे छड़ी जिस गीत से आज मनभावन की शुरुआत हुई वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा का पैगाम मिला। इनके बाद शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का पैगाम मिला। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का, और गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका और वेदिका ने भेजा संदेश। भवानीगढ़ संगरूर से परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर ने संदेश भेजा। इनके बाद रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से संदेश भेज रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बास ऊपरकोट बुलंद शहर मोहल्ला चौखुंडी से संदेश भेजते हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, और ये सुनना चाहते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए, आपके लिए पहुंच रहा है ये बहुत ही लोकप्रिय गीत, फिल्म हीरा पन्ना।

डील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता का, और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता ने भी संदेश भेजा। साथ ही हमें पैगाम मिला है जगदीश कुमार, राहुल, रितिका, और ये हमें संदेश भेज रहे हैं नांगलोई से। इनके अलावा हमें संदेश भेजने वाले हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। अगला पैगाम हमें मिला है गांव खावरी अव्वल से, भेजने वाले हैं चौधरी राजवीर सिंह, और ये गहरा दाग फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए ये गीत आपको सुनवाते हैं, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद संदेश भेजने वाले हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। अगला संदेश जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पर्ल टिकेस्ट्रो और विलिस टिकेस्ट्रो ने भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से। और इनके बाद हमें सुन रहे हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ये कारवां फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

और अब आगे बढ़ते हैं, कई सारे संदेश और हम तक पहुंचे हैं। ये संदेश हमें मिला है, अनीता वर्मा प्रीतमपुरा दिल्ली से संदेश भेज रही हैं। इनके अलावा मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम पटेल, देवी किशन, भावना मन, मानस और कनिका पटेल ने हमें संदेश भेजा। और इनके बाद हमें रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से पैगाम मिला, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। और ये सुनना चाहते हैं दो रास्ते फिल्म से ये गीत।

और इसी गीत के साथ मन भावन को समेटने का वक्त आ चला है, तो मुझे दीजिए इजाजत मन भावन से, मुझे यानी रजनी को, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को सुधारना होगा।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।
0: इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट फिको ने भारत द्वारा हासिल की गई आर्थिक वृद्धि की सराहना की। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण

0: और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में जोरदार उछाल देखा गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुनीम जी से अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज है आशा भोसले की।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर इस ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत, आवाज है मन्ना डे की।

0: अनुसंधान संस्थान सदाशिव नगर बेंगलुरु RRI भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविदों शोधकर्ताओं से निदेशक पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और संस्थान पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण भी उसी का होगा। ये पद भारत सरकार के संशोधित वेतन नियम 2016 के अनुसार वेतन स्तर 17 के उच्चतम पैमाने अर्थात 2,25,000 रूपए प्रति माह का वहन करता है। आवेदन नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए रामन अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.rri.res.in/careers/regular-other-openings। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षक एक पद, अधीक्षण इंजीनियर एक पद, कार्यकारी इंजीनियर एक पद, लेखाधिकारी एक पद। आवेदन का प्रारूप, पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जानने के लिए देखिए वेबसाइट aims.nagpur.edu.in। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश अपने कृषि विज्ञान केंद्र के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या एक है। आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिन है। रोजगार समाचार पत्र में ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 13 से 19 जून 2026 के अंक में। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shuats.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं दोस्तों शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और उनसे जानेंगे क्या कुछ है विशेष उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती है बराबर हमारी नजर। और दोस्तों, हम याद करेंगे हर रोज की तरह उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं सायरा, सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
3: नमस्कार मुनीष, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीष ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या कुछ होगा हमारे आज के शो में, बिकॉज ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स वेयर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रोबेबली हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर, जो मुनीष हम लोग अपने न्यूज बुलेटिन में कई बार उनको नहीं शामिल कर पाते, बट दिस इज वाई वी आर हियर एवरी डे फॉर हाफ एन आवर to give a perfect wrap to your day and all of that in the roughly next half an hour. Let's start with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today.
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे।
3: India welcomes peace deal between Iran and US, says it will help restore peace and stability in the region.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया।
3: United Kingdom announces social media ban for children under 16.
0: और दोस्तों, फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला होगा।

0: काबो वर्दी से।
1: And yes, we throw open Parikrama every day with our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments that are taking place. And today we are going to talk about Global Wind Day. Yes, we're going to talk about a sector that's helping India harness the power of nature, that is the wind energy. Global Wind Day is being observed today.
0: दोस्तों, हर साल 15 जून होती है वो तारीख जब दुनिया भर के देश मनाते हैं ग्लोबल विंड डे, ताकि पवन ऊर्जा और एक साफ सुथरे और हरे भरे भविष्य के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
1: That's right, Munish. Wind energy is one of the fastest growing renewable energy sources globally. It helps reduce dependence on fossil fuels and plays a significant role in combating climate change as well.
0: और सायरा, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं जिसे, जब उसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले सोलर पावर का ख्याल आता है, लेकिन विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा भी चुपचाप उल्लेखनीय प्रगति कर रही है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तंभ बनती जा रही है।
1: Very rightly said, Munish. In fact, here's an impressive fact to start with, that India currently ranks fourth in the world in installed wind power capacity.
0: और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे पता चलता है कि भारत न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है बल्कि विंड पावर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर लगातार उभर रहा है।
1: Absolutely, but what's even more encouraging, Munish, is that the growth isn't just happening through imports or foreign technology.
0: बिल्कुल सायरा, देखो, भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र ने मुख्य पुर्जों के मामले में लगभग 70-80% स्वदेशीकरण तो हासिल कर ही लिया है।
1: That means a large portion of the equipment and technology used in wind turbines is actually being manufactured right here in India itself.
0: और ये अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। दोस्तों, इससे आयात पर निर्भरता कम होती है और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
1: That's right. Speaking of domestic industries, India has developed strong supply chains for critical wind energy components.
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने सायरा। देखिए, ब्लेड्स यानी ब्लेड्स का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में हम करते हैं, और गियर बॉक्स आदि जो अन्य जरूरी उपकरण हैं जैसे पार्ट्स का उत्पादन अब देश के भीतर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
1: विच मीन्स दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर प्लेइंग अ की रोल इन पावरिंग द नेशंस रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस, इजंट इट?
0: इट इज, एंड इससे देखिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है और भारत का जो उत्पादन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इकोसिस्टम जो है वो मजबूत होता है।
1: बट मोनीश, सम पीपल थिंक दैट विंड एनर्जी इज अनप्रेडिक्टेबल, हैज दैट परसेप्शन चेंज ओवर द इयर्स?
0: बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखिए, टेक्नोलॉजी में तरक्की, बेहतर फोरकास्टिंग सिस्टम और ग्रिड इंटीग्रेशन में सुधार ने विंड एनर्जी को भारत के पावर सिस्टम का कहीं ज्यादा स्थिर और एक भरोसेमंद हिस्सा बना दिया है।
1: तो ये कहा जा सकता है मुनीश, दैट विंड एनर्जी इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑल्टरनेटिव सोर्स, इट्स बिकमिंग एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ आवर एनर्जी मिक्स।
0: बिल्कुल सायरा, दरअसल ये भविष्य उम्मीद जगाने वाला है। लगातार तकनीकी सुधारों और अलग अलग इलाकों में इसके और ज्यादा इस्तेमाल के साथ उम्मीद ये है कि पवन ऊर्जा का योगदान और भी बढ़ेगा।
1: And well, this year's observance of Global Wind Day is particularly significant for India. Today, India is hosting the Global Wind Day 2026 conference in Goa under the theme Wind Energy from Ambition to Acceleration.
0: और ये एक प्रेरणादायक विषय है जिससे पता चलता है कि हमने भले ही नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हों, लेकिन अब हमारा ध्यान काम में तेजी लाने और उन लक्ष्यों को हकीकत में बदल देने पर है।
1: Absolutely, Munish. The conference is bringing together government representatives, regulators, wind energy developers, manufacturers, industry leaders and experts from across the sector.
0: मुझे लगता है सायरा की एक बड़ी जबरदस्त सभा होगी, लेकिन इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की योजना है?
1: Well, the event features plenary sessions and panel discussions aimed at identifying practical measures to speed up wind energy deployment, improve project execution and strengthen India's domestic manufacturing capabilities.
0: ये जरूरी है क्योंकि साफ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न सिर्फ पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होती है बल्कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और लागू

0: करने वाले इकोसिस्टम की भी जरूरत होती है.
1: एग्जैक्टली मनीष. द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो हाईलाइट्स सेवरल प्रायोरिटीज शेपिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियाज विंड एनर्जी जर्नी. दीज इंक्लूड रिसोर्स एडिक्वेसी, मैन्युफैक्चरिंग कम्पेटिटिवनेस, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स.
0: और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा नन्ना सा सवाल. क्या आपने कभी असल में विंड टर्बाइन को देखा है? वो बड़े बड़े घूमते हुए ब्लेड्स भले ही साधारण लगे, लेकिन वो प्रकृति की ताकत का इस्तेमाल करने वाली अत्याधुनिक तकनीक का उदाहरण है.
1: एंड एवरी रोटेशन ब्रिंग्स अस वन स्टेप क्लोजर टू अ क्लीनर फ्यूचर. विंड एनर्जी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, मेकिंग इट अ क्रूशियल टूल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. वी हैव अ रिपोर्ट.
2: As wind energy sector is expanding steadily with rising installed capacity and strong wind resource potential across key states, it is increasingly supported by domestic manufacturing and its role in meeting renewable energy targets. To strengthen the sector, the government has introduced several initiatives including competitive bidding, renewable purchase obligations, the repowering policy, national offshore wind energy policy and measures to boost domestic manufacturing. And today, India stands as the world's fourth largest wind power market. Installed wind energy capacity in the country has increased from just over 21 gigawatts in 2014 to more than 56 gigawatts by March this year, while an additional 28 gigawatts are under implementation. The country also recorded its highest ever annual wind capacity addition of over 6 gigawatts in 2014.

0: in India's goal of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity and net zero emissions by 2070. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
1: दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर जोर दिया है। आकाशवाणी पर अपने रेडियो संबोधन मन की बात में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश के कई राज्य इस क्षेत्र में एक नई राह दिखा रहे हैं।
2: आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है।
1: जैसे जैसे भारत अपने एनर्जी ट्रांसमिशन यानी ऊर्जा बदलाव के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, भरोसेमंद, सस्ती और घरेलू स्तर पर उपलब्ध स्वच्छ बिजली पहुंचाने में पवन ऊर्जा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। देश के पास जमीन और समुद्र दोनों ही जगहों पर पवन ऊर्जा के विशाल संसाधन हैं, जो लंबे समय तक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लेकिन इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, बेहतर फोरकास्टिंग क्षमताएं विकसित करने और लगातार पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत तो होगी, क्यों साहे?
3: एब्सोल्युटली मनीष, बाय एक्सपैंडिंग इनटू न्यू जियोग्राफीज, इंटीग्रेटिंग विंड विद स्टोरेज एंड राउंड द क्लॉक पावर सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, इंडिया कैन पोजीशन विंड एनर्जी नॉट ओनली एज अ की कंट्रीब्यूटर टू इट्स क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स बट ऑल्सो एज अ ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
1: और दोस्तों, आज जब हम ग्लोबल विंड डे मना रहे हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है, है ना?
3: And before we proceed, Monish, a very important announcement that in our bilingual live phone-in program tonight, in the program Public Speak at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on benefits of yoga for preventive health and well-being with Anita Kaushik and Kamal Kishore, who are yoga experts. During the program, listeners can also ask questions on the subject. To participate, simply dial telephone numbers 011-2331-0481. There are other numbers as well: 011-2371-7117, 011-2371-7106, and 011-2331-4444. So don't forget, at 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044, or post your queries on X with the hashtag AskAIR.
1: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास। फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियों इन दिनों G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का भारत के साथ एक बेहद अनूठा और ऐतिहासिक रिश्ता भी है। दरअसल, वैश्विक मंच पर भारत के महाशक्ति बनने के सफर की एक बड़ी खास कड़ी इस जगह से जुड़ी है। तो चलिए सीधे चलते हैं एवियों, जहां से हमारे संवाददाता अंकित कुमार इस खास रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं।
4: एवियन के इन सर्द हवाओं का भारत के राजनयिक इतिहास से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। आज से करीब 23 साल पहले यानी साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी शहर में G8 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वह इस ताकतवर वैश्विक मंच पर भारत की पहली ऐतिहासिक मौजूदगी थी। उस दौर में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, जो वैश्विक पटल पर अपनी आवाज को मजबूती से रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। समय का पहिया घूमा और आज हम पहुंच चुके हैं साल 2026 में, और आज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियान की उसी धरती पर कदम रखेंगे तो भारत की मौजूदगी केवल एक साझेदार देश तक सीमित नहीं होगी। आज भारत वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा है। फ्रांस में ही यहां से महज कुछ सौ

0: किलोमीटर की दूरी पर आयोजित भारत इनोवेट्स की सफलता भारत की इसी विकास यात्रा की एक सशक्त मिसाल है। यह दर्शाती है कि भारत अब केवल वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं बल्कि उसे दिशा देने वाले प्रमुख देशों में भी शामिल है। साल 2023 से 2026 तक के इस सफर में एवियान भारत की प्रगति, उसके बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व का गवाह रहा है। आज भी यहां की शांत और खूबसूरत लेक लेमो वैसे ही अटल खड़ी है, लेकिन दुनिया की नजरों में भारत का कद एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। परिक्रमा के लिए एवियान फ्रांस से मैं अंकित कुमार।
1: दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 18 जून को आयोजित होने वाले बोंजो मोदी कार्यक्रम में राजस्थान की लोक संस्कृति की एक बड़ी ही अनूठी छटा देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भारतीय दूतावास ने रईस भारती के नेतृत्व वाले प्रसिद्ध जिप्सी बैंड का चयन किया है। और अधिक जानकारी लीजिए, सुनिए हमारे संवाददाता से।
2: पेरिस के ऐतिहासिक साल प्लेल सभागार में कालबेलिया नृत्य, लंगा मांगनियर गायन और पारंपरिक ब्रास बैंड की प्रस्तुति होगी। डाढ़ी, दमामी तथा राणा समुदायों के कलाकार भी ग्रुप में शामिल है। 20 सदस्यीय यह दल पिछले 26 वर्षों से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहा है और 119 से अधिक देशों में प्रस्तुति दे चुका है। इस अवसर पर आकाशवाणी से बोलते हुए रईस भारती जी ने कहा,
3: मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है हमारे भारतीय दूतावास पेरिस 18 जून को मोदी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। यह अवसर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत समारोह पेरिस साल क्लियर में होने जा रहा है। जैसे कि पिछले 26 वर्षों से बोध ग्रुप राजस्थानी कला और संस्कृति को विराट समारोह में और कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
2: भारतीय संस्कृति की यह रंगारंग झलक पेरिस में भारत की समृद्ध लोक विरासत को नई पहचान देगी। परिक्रमा के लिए महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: And well, Monish, the curtains for the 19th Mumbai International Film Festival or MIFF will rise today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Rabindranath Tagore in the evening, whereas the screenings of films will begin from the morning itself. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries, whereas the non-competition section will feature a total of 202 films, including 106 international titles and 96 national films from 46 participating countries. Let's hear more from our correspondent.
5: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under centenary tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. This year's edition has also introduced two newly curated sections, Marathi Films and Echoes from Northeast. The Waves Dock Bazaar section will feature a total of 155 entries this year, along with 5 projects in the Work in Progress Lab and 12 films under Film Bazaar Recommends, with the viewing room hosting all 155 films for industry access and evaluation. The section will also facilitate robust B2B networking opportunities. For the first time, MIFF will host an AI cinema hackathon titled Mumbai Through a Thousand Eyes, a 48-hour global filmmaking challenge exploring AI-driven storytelling. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories, carrying a total prize money of Rs. 45 lakh along with trophies and certificates. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: और सायरा, ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव यानी राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे संवाददाता ने तो हमें यह भी बताया कि सभी आयु वर्ग के लोग बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
6: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पीठा, अरीसा पीठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: And now we head to the northeast. Well, Meghalaya's farmers

0: Market, which is a platform to help connect farmers from across Meghalaya, was held with their urban consumers, locals, as well as tourists. The June edition showcased the season's highlights, that is pineapples, tomatoes, and radishes, apart from the greens and other local delicacies. It sounds very mouth-watering to me, Monish. I can't hear to, you know, listen to hear more from our correspondent.
1: The sixth edition of Meghalaya's monthly farmers market was held in Shillong. Stalls lined with fresh vegetables, fruits, honey, bamboo shoots, and local delicacies drew crowds of residents eager to connect with the people behind the produce. The June edition of the farmers market featured pineapples, tomatoes, and radishes, which were the season's highlights. It brought farmers, producer groups, and consumers together at one spot to showcase fresh local produce from across Meghalaya. Farmers from across the state showcased their harvest, selling everything from organic greens to traditional food products, bypassing middlemen and reaching consumers directly. The market is a celebration of community and a platform that supports local livelihoods. It provides farmers with direct market access and an opportunity to connect with consumers. For many, this monthly gathering has become a regular way to enjoy fresh, locally grown produce while also learning about the agricultural heritage of the state. The farmers market has built a sizable fan base with regular buyers thronging the event every month. This initiative provides ample opportunities for residents and tourists alike to explore Meghalaya's produce. With initiatives like these, the state government aims to strengthen farmer-consumer connections and encourage sustainable agriculture. As the day winds down, the market leaves behind a sense of community and pride in the state's rich harvest. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
2: सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अधिमास में पड़ने वाली इस विशेष सोमवती अमावस्या पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना दान पुण्य और पितरों के निमित्त तर्पण किया। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने हमें बताया कि स्नान पर्व के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है।
3: लगभग 12 बजे से हमारा स्नान शुरू हो गया था और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें यह है कि जो हमारी पार्किंग स्पॉट थी, जैसे जैसे स्पेस बन रही है, हम नए वाहनों को उसमें ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं जो कि कोई डूबने घटना अगर होती है उसको देखने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट में एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड और इसमें काफी संख्या में हमारे जो है एपी, सीपी और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं, तो पुलिस पूरी तरह घेरा है। प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु अपना अच्छे से स्नान करें, अपने गंतव्य को प्रस्थान।
0: And yog enthusiasts, hark, hark. Well, marking the formal commencement of the grand celebration of International Day of Yog 2026, the Ministry of Ayush hosted the curtain raiser for the 12th International Day of Yog in New Delhi today. Union Minister Pratap Rao Jadhav addressed the media and said that the main event will be led by Prime Minister Narendra Modi at Red Road in Kolkata. The minister also said that a 45-minute yog protocol will be conducted on the occasion. Parallel to the main event, Shri Jadhav said that it is planned that yog sessions will be conducted on 500 boats on the Hooghly River.
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
2: और दोस्तों, आइए अब आपको ले चलें खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। फीफा विश्व कप 2026 में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा रात 9:30 बजे से।
0: And now, Monish, we all know that with the announcement of the final deal being between, you know, the US and Iran, so market ke sentiment bahut acche aaj dekhne ko mile. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of the peace agreement. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while Nifty jumped 231 points to settle stable at 23,854. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और आइए अब हम याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
5: We remember freedom fighter Sirbundhan. He was in the service of the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence in 1857 and also motivated his fellow sepoys to leave their service and take part in the struggle for freedom from the oppressive foreign rule.
6: He fought the company on several occasions and was finally caught in an encounter, charged with desertion and mutiny against the British authorities. Sirbundhan was sentenced to transportation for life with hard labour and irons on the 15th of August 1857. He died there in detention on the 15th of June 1858.
5: 15th of June is also the death anniversary of Harilal Shah. He participated in the Dharasana Salt Satyagraha in May 1930. When Gandhiji decided to go for the Dharasana Salt Satyagraha, he wrote to Viceroy Irwin and told him about his plan. To prevent Gandhiji from acting, he was arrested on the 4th of May 1930 and detained near Pune. The Dharasana Satyagraha went ahead as planned by Gandhiji, with Abbas Tayyabji leading the march with Kasturba Gandhi at his side.
6: Both were arrested before reaching Dharasana and sentenced to 3 months of imprisonment. After their arrests, the Satyagrahis, including Harilal Shah, continued the march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
5: "You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
6: As apprehended, the armed forces began clubbing the Satyagrahis with steel-tipped lathis in an incident on the 22nd of May 1930, and many Satyagrahis, of whom one was a badly injured Harilal Shah. Later, Harilal Shah succumbed to his injuries on the 15th of June 1930.
5: We also remember Gandhian freedom fighter Kushal Konwar. On the 10th of October 1942, hidden in the thick fog of early morning, some people removed a few sleepers from the railway line near Sarupathar in Golaghat district. A military train passing by derailed and many British and American soldiers lost their lives.
6: Accusing Kushal Konwar of being the chief conspirator of the train sabotage, the British police arrested him. At dawn on the 15th of June 1943, at 4:30 a.m, Kushal Konwar was hanged at Jorhat Jail. AIR News salutes the great nationalist.
2: और दोस्तों, आज जयंती है तारकनाथ दास की, जो एक महान भारतीय क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे। विदेशों में रहकर आपने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। उत्तर अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेताओं में से वो एक थे और फ्री हिंदुस्तान नाम का एक अखबार उन्होंने शुरू किया था। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आपने शुरू की थी गदर पार्टी। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहने की वजह से अमेरिका में उन पर मुकदमा चला। 2 साल की जेल की कैद की सजा उन्हें काटनी पड़ी और जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लेकिन जारी रखी और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से बीए और एमए की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी ली और अमरीका के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर भारत का परचम वो लहराते रहे। उनकी स्मृति को हम अपने दिल से देते हैं श्रद्धांजलि।
0: Today we are also remembering Zia Fariduddin Thakur on his birth anniversary. Of course, we all know that he was a classical vocalist belonging to the Dhrupad tradition, which is the oldest existing form of North Indian classical music.
2: जी हाँ, दरअसल उस्ताद जियाउद्दीन टागर के बेटे फरीदुद्दीन ने अपने दिवंगत भाई मशहूर रुद्र वीणा वादक जिया मोहिद्दीन डागर के साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को एक तरह से पुनर्जीवित किया था। उसके पुनर्जागरण में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी।

0: और श्रोताओं, अब दीजिए हमें इजाजत ये कार्यक्रम समाप्त करने की।
1: नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के

0: जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Narendra Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership. Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: AI ka bhavishya keval innovation se nahi, balki trust, responsibility और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Modi reached Slovakian capital Bratislava last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will reach Avignon tomorrow to participate in the summit. The G7 summit under the French presidency has chosen some key priorities for the current year. These include reducing excessive

वो बीते जमाने, वो सपने सुहाने, गुजरे हुए दिन और पुराने तराने, जो आज भी बीते कल की याद दिला जाते हैं। गाते गुनगुनाते में 90s के कुछ लोकप्रिय गीत लेकर आपके साथ है रजनी।

जख्म फिल्म से ये गीत अलका याग्निक से आपने सुना, जो कि फिल्माया गया था पूजा भट्ट पर। इसमें पूजा भट्ट ने जख्म फिल्म में एक जवान महिला और फिर अधेड़ उम्र की महिला की भूमिका निभाई थी और उनकी भूमिका को काफी सराहा भी गया था। फिलहाल अगला गीत हमने चुना है आपके लिए एक बार फिर अलका याग्निक की आवाज में। साथ में है कुमार सानू और फिल्म का नाम है बरसात।

ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात से। पहले ये फिल्म जो थी ये बादल नाम से बन रही थी और तब इसमें बॉबी देओल के साथ करिश्मा कपूर की जोड़ी थी और इसे डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। लेकिन तकरीबन 20 दिनों की शूटिंग के बाद शेखर कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी और इसके बाद करिश्मा कपूर की जगह ट्विंकल खन्ना ने ले ली। फिल्म का नाम भी बदल के बादल से बरसात हो गया। बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म से डेब्यू किया। इस जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इसके गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें से कि एक गीत अभी हम आपको सुना चुके हैं और अगला जो गीत है वो एक बार फिर आपको सुनवाएंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फूल और कांटे की बात कर रहे हैं, इसमें अजय देवगन के साथ मधु ने पहली बार हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। उन दिनों इस बात की चर्चा थी कि इससे पहले मधु को सनम बेवफा के लिए साइन किया गया था, मगर बाद में उनकी जगह चांदनी ने ले ली। इसी तरह मधु की जो पहली फिल्म थी वो सनम बेवफा की जगह फूल और कांटे बन गई और इस तरह फूल और कांटे के रूप में मधु हिंदी दर्शकों के सामने आई। अगला गीत इसी फिल्म से हम आपको सुनवाते हैं, फूल और कांटे से। लीजिए सुनिए।

अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म कच्चे धागे से, और ये गीत भी फिल्माया गया है अजय देवगन पर ही, और उनके साथ हैं मनीषा कोइराला। हालांकि मनीषा कोइराला से पहले इस रोल के लिए मयूरी कांगो को फाइनल किया गया था। तो कच्चे धागे का राइटर सॉन्ग आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
8: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
9: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।

0: 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स, उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क, डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

90 के दशक में जब शाहरुख खान ने बाजीगर फिल्म साइन की थी तब बहुत से लोगों को उनके फैसले पे हैरानी हुई थी, उन्होंने सवाल उठाए थे क्योंकि सबको लगा था कि करियर की शुरुआत में इस तरह का ग्रे शेड या फिर नेगेटिव करेक्टर करना शाहरुख खान के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। उनसे पहले अनिल कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार और अरबाज खान ये रोल रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन शाहरुख खान ने इस रोल में अभिनय की अपार संभावना देखी और इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार उनका फैसला ही सही साबित हुआ। उनके इस करेक्टर को समीक्षकों के साथ दर्शकों को भी बहुत प्यार मिला और ये फिल्म आज भी शाहरुख खान की सबसे यादगार फिल्मों में से गिनी जाती है। बाजीगर फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में ये गीत था फिल्म सलामी से। आप सुन रहे हैं गीत गाते गुनगुनाते आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

रखा है। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी का रोल उनके सबसे यादगार कैरेक्टर्स में से एक है। हालांकि जब फिल्म के प्रोड्यूसर जेपी दत्ता ने उनसे इस रोल के लिए संपर्क किया था तब उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में इस रोल के लिए अरमान कोहली से भी बात की गई लेकिन अल्टीमेटली सुनील शेट्टी ने इस रोल के लिए हाँ कह दी। ये फिल्म श्रावणी मुखर्जी की पहली फिल्म थी। सुनील शेट्टी और श्रावणी मुखर्जी पर फिल्म आया बॉर्डर। फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय और रोमांटिक सॉन्ग आपको सुनवाते हैं, आवाज है रूप कुमार राठौर की।

इसी के साथ हमारे भी चलने का वक्त आ गया है, तो फिर रजनी को इजाजत दीजिए गाते गुनगुनाते से, फिर किसी दिन मुलाकात होगी ऐसे ही। फिलहाल चलती हूँ और आप सुनते हैं कुछ ही देर में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

आपने इतनी मधुर आवाज से फिल्म पाकीज़ा से गीत सुना। आवाज जी हाँ, लता मंगेशकर जी की थी। और अब एक और बेहतरीन सा नगमा फिल्म आरज़ू से आप सभी के लिए, और ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा। इसके साथ मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्तभण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तर प्रदेशस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां संचालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकांतरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति, अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेण अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने

0: Namaskar, good evening, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, we shall also be taking calls from you today on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, the numbers on which you may call us are as follows: 2331-4444, 2331-0464 and 2371-7106. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add a prefix code 011 to these numbers. I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई प्रमुख आर्थिक खबरें लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0464 या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करना चाहिए. याद रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं देंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे. शरद जी, आपको मालूम ही है. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग.
0: Thank you, Manoj. Yes, friends, let's begin with the headlines right away now. Benchmark domestic indices rise nearly 1%, Sensex jumps over 700 points and Nifty settles above 23,800. India's wholesale inflation accelerates to 9.68% in May this year, and global crude oil prices tumble amid US-Iran peace deal announcement.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लगभग 1% लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 700 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 23,800 के ऊपर हुआ बंद. देश में इस वर्ष मई में थोक मूल्य पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर 9.68% पर पहुंचे और अमेरिका तथा ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बड़ी गिरावट. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक आज लाभ के साथ बंद हुए, लेकिन पहले आपको हम देंगे अनिवार्य सूचना वैधानिक.
0: Yes, for our listener friends, there's a disclaimer, and that is that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Well, Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision, right? And we further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ये थी हमारी आवश्यक सूचना जिस पर आपको देना चाहिए ध्यान. आइए अब चलें शेयर बाजार एक बार फिर से. आज बाजार में अच्छी खासी खरीदारी की गई. दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा ने निवेशकों का विश्वास बाजार पर बढ़ा दिया और खूब खरीदारी निवेशकों ने की. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 736 अंक बढ़त के साथ 76,264 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़त के साथ 23,854 पर पहुंच गया. विस्तृत बाजार की ओर आपको लिए चले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स में 1.3% की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ. उधर भू राजनीतिक तनाव घट जाने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई, जिससे निवेशकों का जोखिम लेने का उत्साह बढ़ा और महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीदें बढ़ गईं. बाजार के लोगों ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया और अधिकतर सेक्टर में बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड टुडेज ट्रेडिंग सेशन विद स्ट्रॉन्ग गेन्स ऑफ नियरली 1%। इन्वेस्टर सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ अ पीस अग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। द सेंसेक्स सर्ज्ड 736 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,264, व्हाइल निफ्टी जंप्ड 231 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,854. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed 1.3%, while the small-caps 100 index advanced 1.1%. The easing of geopolitical tensions triggered a sharp decline in global crude oil prices, boosting investors' risk appetite and reinforcing hopes of lower inflationary pressures. Market participants welcome the development with broad-based buying seen across most sectors. जी,
1: श्रोताओं, आप में से दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह प्रशांत जी और हमारे एक अन्य श्रोता भी अमित जी की हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। हम आपके सवालों को लेंगे, लेकिन पहले शेयर बाजार में आज उत्साह देखा गया, तो कुछ खबर और हम देंगे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, उसके बाद आपके साथ बातचीत करेंगे। धैर्य के साथ हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। सेंसेक्स में संभले 30 में से 22 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अच्छा प्रदर्शन ट्रेंट ने किया, जिसके शेयरों में 5.3% की शानदार बढ़त हुई। उधर इंडिगो का शेयर 3.6% और बजाज फिनसर्व के शेयर 3.6% लाभ में रहे। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में सबसे आगे थी एनटीपीसी कंपनी, जिसके शेयर 1.6% नुकसान में रहे। आईसीआईसीआई बैंक को 0.9% का घाटा हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर तथा अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 0.5% के आसपास की गिरावट हुई।
0: Among the sectoral indices on the BSE, 22 out of 25 sectors ended in the green. Realty advanced 3.9%, auto rose 2.7%, and consumer discretionary gained 2.4%. In contrast, hospitals as well as healthcare slipped 0.5%, and metal dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 3,086 companies advanced, 1,323 declined and 206 remained unchanged.
1: रुपए पर नजर डाल लें। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 40 पैसा मजबूत हुआ, 94.71 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक दिन के कारोबार में 99.51 पर चल रहा था। और अब हम श्रोताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर काफी देर से धैर्य के साथ बने हुए हैं अमित, लेकिन हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रशांत जी को पहले। प्रशांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
3: हाँ जी शरद जी, अब जो ये होना था कि एक वॉर एंड होनी थी और ये एग्रीमेंट साइन होना था, वो हो गया, उसको मार्केट ने डिस्काउंट भी कर लिया आज। अब गोइंग फॉरवर्ड जो इंडिया की इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाली है और जो मॉनसून खराब होने वाला है और जो कॉरपोरेट रिजल्ट सब कम आएंगे क्योंकि वॉर का जो इफेक्ट आएगा, तो डू यू सी कि आने वाले टाइम में मार्केट इज हेडिंग फॉर अ बिग फॉल?
2: प्रशांत, हम ये तो नहीं कह सकते मार्केट इज हेडिंग फॉर अ बिग फॉल, पर हाँ, मार्केट वोलेटाइल जरूर रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, क्योंकि भले ही युद्ध शांत हो गया है, पर क्योंकि जो इन्फ्लेशन सिस्टम में घुस जाती है उसको धीरे धीरे समय लगता है वापस करने में। जो माल महंगी दरों पे बन के फैक्ट्रियों में आ चुका है, जो स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आ चुका है, वो उसी कीमत पर बिकेगा। मेरा ऐसा अनुमान है प्रशांत के 2-3 महीने लगेंगे इस परिस्थिति को नॉर्मलाइज होने में। शर्त यह है कि शांति का वातावरण बना रहे, फिर से एक बार कोई ऐसा प्रोवोकेटिव जिसको कहते हैं वो ऐसा कुछ ना हो। पर आगे जी हाँ, एल नीनो का भी खतरा बताया जा रहा है, मॉनसून इस बार कम है, एल नीनो, बिल्कुल, वो सब जो परिस्थितियां हैं उनसे हमें जूझना पड़ेगा। पर उम्मीद करते हैं प्रशांत, हम बहुत आशावादी होकर मैं बात करता हूं कि ऐसा नहीं है जैसा अभी तक था, कम से कम उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए। ये बहुत बड़ी परिस्थिति थी, आप जानते ही हैं क्या हाल हो रहा था, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और ऑयल की, एनर्जी की प्राइसेस। तो हम उम्मीद करते हैं उतना बुरा हाल नहीं होगा, थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। जी हाँ, Q1 और Q2 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ये तो जून तक तो वैसे ही आपको पता है ज्यादातर युद्ध की परिस्थिति थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, थोड़ा सा इससे अगले क्वार्टर में भी, पर मुझे

0: फ्राइडे को इन दोनों की मीटिंग होने वाली ईरान और यूएस की, ऑफिशियल जब वहां पे डिसीजन लग जाएगा मुहर, तो क्या सर सारी बातों पे सहमति, आम सहमति दोनों देशों के बीच बन गई है यूरेनियम से लेकर के और हॉर्मोन्स के लिए? और दूसरी सर कि अगर ए नाम की कोई कंपनी है, कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूँ, ए नाम की कोई कंपनी है उसका, क्योंकि सर आप टेक्निकल भी बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं सर, इसे पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो सर।
1: हाँ जी, हाँ जी बताइए।
0: ए नाम की कोई कंपनी है उसका 30 DA में 365 रुपए है मान लीजिए, ठीक है सर
1: जी,
0: और वो 383 रुपया पे आज काम कर रही है, ठीक है सर
1: जी।
0: और सेकंड जो DMA है 50 DA में 387 रुपया का है मान लीजिए, मान है, ठीक है सर। तो क्या कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर वो 387 क्रॉस कर जाती है, लाइक मान लो टच कर जाती है, तो क्या हम 30 DMA को SL मान के हम उसमें नया फ्रेश एंट्री उस ए नाम की कंपनी के स्टॉक में ले सकते 387-383 के रेट पे? धन्यवाद सर।
1: अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं अमित ने, खासकर दूसरा वाला। देखिए, पहला वाला तो ये तो राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो क्या शेप निकलती है, एक एक एक बेसिक टर्म्स पे एग्रीमेंट हुआ है, उसको ईरान ने भी कंफर्म किया है, फिंगर्स क्रॉस्ड एक अंग्रेजी में बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से वार्ता हुई है और जिस तरीके से समझौता हुआ है, शुक्रवार तक इंतजार करते हैं अमित आपके जवाब का, जितना आपको इंतजार है उतना मुझे भी इंतजार है, उतना ही राष्ट्रपति ट्रंप को और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव को भी इंतजार है, तो इसके आप इंतजार करिए। आपका जो दूसरा सवाल है, आपने डेमा की बात करी, हम लोग डेमा कहते हैं 50 डे और 100 डे। देखिए, पहले तो आपको मैं अमित ये बता दूं, अगर आप ये सवाल ट्रेडिंग करने के लिए पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको एक आगाह करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में सेबी का रिकॉर्ड है, सेबी का एक स्टेटमेंट आया कि 85% लोग पैसा गंवाते हैं। और अगर आप, क्योंकि हम लोग मार्केट मंत्रा में ट्रेडिंग की उतनी बात नहीं करते, हम लोग लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं उसके, और अगर आप लंबी अवधि के लिए हमें ताना चाहते हैं तो फिर तो अगर कंपनी ए जो आपने कहा, क्योंकि नाम नहीं लेते हैं, बड़ी समझदारी से आपने नाम ना लेते हुए उदाहरण के तौर पर लिया है, तो मुझे लगता है उसके फंडामेंटल्स आप चेक करिए, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी के पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्या उनकी टॉप लाइन्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं वो भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीजों को देख के हम निर्णय लेते हैं, और कंपनी का आगे पोटेंशियल क्या है, सेक्टर कौन सा है, इन चीजों को देखिए। ये डेमा और ये लेके तो टेक्निकल एनालिसिस जो करी जाती है अमित, वो जनरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। हम फंडामेंटल, और क्योंकि एक कहावत होती है इंग्लिश में, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सुनिएगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो अगर आपका होराइजन 5 साल से 10 साल का है तो डेमा वेमा छोड़िए आप, इस पर मैं बहुत बोल सकता हूं, पर मैं थोड़ा अपने आप को बहुत रोकता हूं इससे बोलने पे कि श्रोता मोटिवेट ना हो जाए। 50 DMA देखा आपने, 100 DMA देखा, टेक्निकल चार्ट पे किस किस डेमा को वो ब्रेक कर रहा है। हाँ, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए हम देखते हैं, पर मैं आपको सलाह ये दूंगा हमें कि आप लंबी अवधि के निवेशक बने। इस शेयर मार्केट में उस व्यक्ति ने पैसा कमाया जिसने लंबे वक्त तक वक्त बिताया।
2: हमारे साथ कई श्रोता और इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम लिए चलेंगे आप सभी को मुंबई। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, नियमित श्रोता। रत्नाकर जी स्वागत, अपना सवाल संक्षेप में रखिए।
3: हेलो
2: जी,
3: गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि अभी कच्चे तेल में जो गिरावट हो गई उसका फायदा आम आदमी को मिल सकता है क्या, और वो कैसा मिलेगा, एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मेरा एक इनकम टैक्स में के लंबी समय से पेंडिंग है
1: जी।
3: वो फेसलेस रीडिंग के नाम पर उसका अभी भी अपील पर अपील होता है, लेकिन अभी भी उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: चलिए, आपका पहला सवाल है रवि रत्नाकर जी, क्रूड ऑयल की कीमतों का बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, अगर कीमतें युद्ध से पहले $65 और $70 के बीच में थी, मुझे याद है $67 हुआ करती थी जब युद्ध स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, उससे पहले
4: जी।
1: तो अगर कीमतें और गिरती हैं, मुझे लग रहा है ओपेक और ओपेक प्लस भी कुछ सप्लाई बढ़ाने का निर्णय ले सकता है शुक्रवार की ये साइन होने के बाद, जब साइन होगी जिनेवा में। तो अगर ऐसा होता है तो कीमतें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि $70 तक आएंगी, और अगर आती हैं तो जरूर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंसिडर करेंगी कि कीमतें अब नीचे करनी चाहिए, उनकी अंडर रिकवरी पे डिपेंड करेगा। पर ओवरऑल हमें रत्नाकर जी फायदा होगा, क्योंकि इसलिए फायदा होगा कि जितनी इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से, और भी इनपुट्स जो बढ़ रही थी क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची रहने की वजह से, उन सब में फर्क पड़ेगा। तो आने वाले महीनों में जब यह समझौता हो जाएगा और यहीं पर टिकी रही कीमत, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपको इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आती थी। दूसरा, आपने आईटी केस का पूछा, तो आपने कहा कि फेसलेस असेसमेंट में अपील पे अपील लग रही है, तो आप इंतजार करें। कई दफे क्या होता है, सीआईटी अपील्स के पास, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स कहते हैं, उनके पास क्यू बहुत होती है किसी किसी जोन में। क्यों होता क्या है, मैं मनोज और लालिमा को बता दूं, अब जब आप अपील फाइल करते हैं

0: ने केस किया अगेंस्ट, तो इसको क्योंकि फेसलेस है तो ऐसा हो सकता है दिल्ली की अपील बेंगलुरु में सुनी जा रही हो, बेंगलुरु की अपील जो है मुंबई में सुनी जा रही हो और जयपुर की अपील हैदराबाद में सुनी जा रही हो, तो वो पता नहीं लगने देते हैं जानबूझ के, यही फेसलेस की खूबसूरती है। तो हो सकता है उस सेक्टर में रत्नाकर जी अभी भीड़ भाड़ होगी काफी अपील्स, अगर फिर भी होता है तो आप एक अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपलोड करके अपने लॉग इन करके और उसकी सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई कई दफे थोड़ा सा विलंब हो जाता है।
1: By Ravi calling all the way from Bhilai. Ji Ravi, sawal puchhe aapka.
2: Thank you. Namaste ma'am.
1: Namaste.
2: Sharad ji, namaste.
0: Namaste Ravi ji.
2: Risk appetite DIIs aur individual investors ka badh raha hai aur udhar lakhon karodon rupaye ka profit jo hai sabhi is book karke bhag gaye. Ye log wapas kab aayenge pehla aur dusra sir gold ko kahan jata dekhte hain iske baad aage.
0: चलिए, रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, आपने विदेशी संस्थागत निवेशकों का आपने कहा बेच के भाग गए। देखिए मेरा इसमें, मैं पहले भी मार्केट मंत्रा में कई दफे इस पे कमेंट कर चुका हूं। देखिए आप मुझे बताइए रवि, अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करा हो और आपके पैसे कल को 200 हो गए हो, तो आप जब बेच के जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रवि जी भाग गए, मैं ये कहूंगा कि रवि जी ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मुझे लगता है इनको भी हक है और इनको ये स्वतंत्रता दी जाती है, आप कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं। मुझे लगता है हमारी मार्केट मनोज और लालिमा आत्मनिर्भर बन रही है। अब हमारे जो देसी बॉयज हैं जिनको मैं बोलता हूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका पैसा आ रहा है और धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर रहा है, उसकी वजह से हमारी जो इनकी पार्टिसिपेशन है ओवरऑल मार्केट में वो 25% से घट के अब 15-16% तक आ रही है, एक हेल्दी मेच्योरिंग मार्केट की पहचान है। तो ये वापस आएंगे, इनका ये तो देखिए ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ मुनाफे के सगे हैं। यहां से ताइवान चले गए, ताइवान से वियतनाम चले गए, वियतनाम से चीन चले गए, कोरिया चले गए, और जब वहां की भी मार्केट ऐसी हो जाएगी फिर ये लौट के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये लोग चले गए हैं। मुझे एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ऐसे आप इसको समझिए, बिल्कुल आएंगे ये वापस, और जैसे ही हमारी और अट्रैक्टिव हो जाएगी ये लोग जरूर वापस आएंगे।
1: आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला, आत्मनिर्भर हो रही है हमारी
0: मार्केट में, डोमेस्टिक पैसा आ रहा है। और आप देखिए जिस दिन ये बेचते हैं, मान लीजिए 5,000 करोड़ बेचे, तो उस दिन हमारे जो देसी बॉयज हैं वो, मैं DIIs को देसी बॉयज बोल देता हूं, तो वो लोग बाकायदा उन कंधे से कंधा मिला के 5,000-6,000 करोड़ उसमें लगा देते हैं। वरना अगर आप सोचिए, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जिस तरीके से इन्होंने सितंबर 2024 के बाद से सेल लगाई हुई है, मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं करोल बाग रजौरी गार्डन में दिल्ली में क्या सेल लगती होगी जो इन्होंने लगाई हुई है, इतने दिन से लगातार बेचे जा रहे हैं। उस हिसाब से तो हमारी निफ्टी को 12,000 आ जाना चाहिए था, पर निफ्टी आज भी 24,000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपना डोमेस्टिक पैसा है वो इसको रिप्लेस कर रहा है, और एक अच्छी हेल्दी मैं समझता हूं बदलाव है उसका।
1: नो लॉन्गर आर मार्केट्स गेट ट्रफल्ड व्हेन FIIs गो,
0: नो नो, नॉट एज मच एज इट यूज्ड टू बिफोर,
1: राइट।
3: भारतीय बाजार मजबूत हो रहा है, ये चर्चा हमारी, और इस मजबूत होती अर्थव्यवस्था के बीच, बाजार के बीच खबर थोक मूल्य सूचकांक की, जहां थोड़ी सी जो महंगाई है वो बढ़ने की खबर है। देश में थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित भारत की मुद्रा स्फीति दर वार्षिक आधार पर 9.68% पर पहुंच गई। ये दर नए आंकड़ों पर आधारित है, जबकि पुराने आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ये 8.26% पर थी। ये एक दशक से अधिक समय में भारत की थोक मुद्रा स्फीति श्रृंखला का बड़ा संशोधन है। इसमें आधार वर्ष को 2012 से 2023 तक अद्यतन किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के निर्माण और बुनियादी धातुओं के निर्माण की बढ़ी कीमतों के कारण हुई। WPI मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि पश्चिम एशिया में लगातार भू राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के निरंतर प्रभाव को दिखाती है। इसमें घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति के और अधिक फैलने का खतरा बढ़ जाता है। प्रमुख श्रेणियों में ईंधन और बिजली क्षेत्र में वार्षिक मुद्रा स्फीति दर मई में बढ़कर 30.33% हो गई, अप्रैल में 24.89% पर यह थी। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रा स्फीति भी 3.78% से बढ़कर 5% हो गई। इसमें आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे, विशेष रूप से जो आधार वर्ष है वो बदला गया, वो संशोधन क्या है, श्रोताओं को हमें समझाना चाहिए, और साथ ही ये आंकड़े क्या कह रहे हैं।
0: जी हाँ, देखिये जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसकी जगह अब पीपीआई, जिसको प्रोड्यूसर्स इंडेक्स बोलते हैं, वो लाई जा रही है। और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है मनोज लालिमा कि इसमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है, करीब करीब 60% कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का होता है, और यह भी सच है कि होलसेल कन्वर्ट होकर रिटेल में आती है। तो ये जो पिछला महीना है तो वैसे ही हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आप देखिए जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस, वो भी 3.93 अभी कुछ दिन पहले आई, तो मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रांजिशनरी फेज है, आने वाले महीनों में ये आपको यहां से शांत होती दिखेगी।
1: Alright, Sharad ji, we now have Bharat calling us from Gujarat. Yes, Bharat, please ask your question. Bharat ji, are you
4: Hello.
1: there? Yeah, yeah. जी
4: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी,
4: सबको मेरा नमस्कार जी। मैं एफएम गोल्ड ऑलवेज सुनता हूँ और मार्केट मंत्रा का हमें इंतजार रहता है।
1: थैंक यू जी।
4: पहला सजेशन हमारा ये है मैडम कि टाइमिंग बढ़ा दीजिए इसका, 45 या 1 घंटे का कर दीजिए अभी।
1: अच्छा ठीक है,
4: वॉलेट भी बढ़ गए और इन्फॉर्मेशन भी हमको ज्यादा मिलेगा ऐसा।
1: जी जी, हम कन्वे कर देंगे आपकी बात। जी, सवाल पूछेगा प्लीज।
4: और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये साल में स्टॉक मार्केट में लॉस किया है तो उसका मतलब ये सेगमेंट लॉस का जो है वो नेक्स्ट ईयर में हम क्लेम कर सकते हैं?
0: जी हाँ भरत, अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में जाएगा, और अगर एक साल से ज्यादा आपने होल्ड किया था भारत, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और आप देखेंगे अगर जो स्केड्यूल सीजी होता है आयकर विवरणी में, उसमें जो सीजी स्केड्यूल होता है उसमें बकायदा अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, और उस लॉस को आप क्लेम कर सकते हैं। यही नहीं कर सकते, आप इसको अन्य कैपिटल गेन से सेट ऑफ भी कर सकते हैं, और आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर लॉस आपका फिर भी बच रहा है आने वाले सालों में, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लॉस को देखिए, लॉस तो जो होना था हो गया, पर कम से कम अब उसका लाभ जो ले सकते हैं आप टैक्स के रूप में, वो आप अवश्य लीजिएगा।
3: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है रमेश। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार सर। सर मेरा कोहली साहब से क्वेश्चन है सर कि सर 1991 में सर जी मैंने 45,000 सर जी एनएसएस पे लगाए थे, नेशनल सेविंग्स के पोस्ट ऑफिस सर जी लगाए थे मैंने। सर जी वो अब अच्छा अमाउंट बन गया सर जी, वो कह रहे हैं ले लीजिए क्योंकि सर जी ना गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दी है
0: जी।
5: तो सर जी पैसे मैं ले रहा हूँ सर जी, आप थोड़ा बता देंगे क्या वो टैक्सेबल मेरी इनकम बनेगी, नॉन टैक्सेबल रहेगी सर जी वो?
0: जी हाँ रमेश जी, बदकिस्मती से वो टैक्सेबल है, एनएसएस पे टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मनोज लालिमा ये सवाल किया क्योंकि जब एनएसएस आया था आपको याद होगा बहुत ही पॉपुलर हुआ था, नेशनल सेविंग स्कीम इसको बोलते थे, पर अब जब मैच्योर हो रही है तो वो टैक्सेबल है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और मैं लगातार उसका जवाब को हमें एक दो एपिसोड छोड़ के आ ही जाता है, तो उस पर वो टैक्सेबल होगा रमेश, उसको आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको लेना पड़ेगा।
1: All right, here we go. Now let's talk about exports. India's total exports, that's merchandise and services combined for May, are estimated at $81.96 billion, reflecting a robust 15.83% year-on-year growth compared with May 2025. According to provisional data released by the Commerce Ministry, total imports in May are estimated at $92.47 billion, registering a 19.23% increase over the corresponding month last year. The cumulative exports of merchandise and services combined during April to May of the current financial year are estimated at $162.69 billion, compared with $141.89 billion during April-May of the previous financial year, representing an estimated growth of 14.66%. India's merchandise trade deficit narrowed marginally to $28.21 billion in May from $28.38 billion in April.
3: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बीच बेरोजगारी की दर मई में इस वर्ष बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई। अप्रैल में ये 5.2% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी मासिक श्रम शक्ति और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 5.1% रही। अप्रैल में ये दर 4.6% पर थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है, 6.4% पर आ गई, जबकि इससे पिछले महीने अप्रैल में ये दर 6.6% थी। आलोच्य अवधि में वार्षिक आधार पर 15 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर 5.6% और पुरुषों के बीच 5.4% दर्ज हुई।
1: वेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको फॉर स्लोवेकियाज सपोर्ट इन एडवांसिंग नेगोशिएशंस ऑन द इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेइंग बोथ साइड्स वुड वर्क टुवर्ड्स अर्ली इम्प्लीमेंटेशन टू बेनिफिट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स एंड ट्रेडर्स इन बोथ कंट्रीज।
3: आइए आपको लिए चले श्रोताओं जयपुर, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
6: हाँ धन्यवाद सर। जैसे मैंने आज राजस्थान पत्रिका में न्यूज पढ़ा, हालांकि वो मेन न्यूज नहीं है, जैसे आप लोग जागरूक करते तो उससे ऊपर में वो पेपर के ऊपर में हम लोग को जागरूक करता है, तो जैसे उसमें लिखा इन्वेस्टमेंट मीटर कंपनी से भी बड़ा इनका निवेश, तो 5 कंपनी का नाम है उसका मार्केट कैप है और निवेश की राशि जो है वो मार्केट कैप से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या समझे, हमको समझ भी नहीं आया।
0: मुझे नहीं पता किस देश का आप, अमेरिका का पूछ रहे हैं कि आप भारत का पूछ रहे हैं? मेरे ख्याल शायद अमेरिका का पूछ रहे हैं क्योंकि वहीं पर इतना बड़ा नंबर आता है। बिल्कुल, देखिए उनका, अगर आप अमेरिका का पूछ रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर जो कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हैं, खास ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी और ये नैस्डैक में रजिस्टर्ड है। अभी हाल ही में एक कंपनी का पब्लिक इशू आया, स्पेसएक्स का, आपने देखा होगा, वो बहुत उसने अपने आप में चर्चा बटोरी, $135 का शेयर था और सीधा $2 trillion पे वो लिस्ट हुआ। जी हाँ, वो अमेरिकन मार्केट हमसे बहुत बड़ी है और वहां पर एक कंपनी ही कई बार एक 2-3 कंपनी मिलकर हमारे पूरे मार्केट कैप को एक्सीड कर जाती है। बाकी मैं पूरा जितेंद्र आपका समझ नहीं पाया कि आप कौन सी, मैं उम्मीद करता हूं मैंने ठीक गेस किया कि आप अमेरिका के बारे में पूछ रहे थे।
3: आइए अब आपको लिए चले वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख शेयर बाजार, एशियाई शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.2%, जापान का निक्केई 225 सूचकांक 5%, ताइवान का ताइएक्स 2.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुए। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1% और हांगकांग का हेंगसेंग 0.5% लाभ में रहे। यूरोप पर नजर डालें तो यूरोपीय जोन के प्रमुख बाजार भी लाभ के साथ समाचार तैयार किए जाने तक चल रहे थे। जर्मनी का डेक्स 1.4%, फ्रांस का कैक 40 1.2% और लंदन का फुटसी 100 0.1% के आसपास बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
1: एंड लुक एट द ऑयल प्राइसेस, वेल ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड शार्पली टुडे। ब्रेंट क्रूड टंबल्ड 5.1% टू $82.87 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड, व्हाइल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड प्लंज्ड 5.6% टू $80.15 पर बैरल एट द टाइम ऑफ द लास्ट रिपोर्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द बुलियन मार्केट, 24-कैरेट गोल्ड वॉज ट्रेडिंग 1.7% अप एट 1,53,550 रुपीज पर 10 ग्राम्स, व्हाइल सिल्वर वॉज ट्रेडिंग 2.6% हायर एट 2,53,980 रुपीज पर किलोग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो।
3: MCX पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी चल रही थी। अगस्त नवंबर वाले सोने का मूल्य 2% बढ़त के साथ 1,53,519 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर जुलाई अनुबंध वाली चांदी 3% से अधिक लाभ के साथ 2,53,720 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। शरद जी, यहां पर तेल और सोने चांदी दोनों के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे, हमारे पास जो
0: सीमित समय। पहले सोने चांदी पर बोलूं क्योंकि मुझे याद है रवि भिलाई से थे, उन्होंने पूछा भी था, शायद हमको बताना रह गया। मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के थोड़ा कूल डाउन होने से उछाल आया। नजर रखिए 16 और 17 को जो फेड की मीटिंग है अमेरिका में, अब उनकी कमेंट्री पे, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ने की, रेट बढ़ने की उम्मीद मुझे कम लग रही है, पर उस पर नजर रखिए, आगे की चाल उस पर निर्भर करेगी।
3: यानी आने वाले दिनों में आपको कुछ दिन इंतजार करना है सोने के दाम पर। तेल के दाम घटे हैं तो ये घटते रहें, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात। और यहीं पर आप सभी श्रोताओं की ओर से हम शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: माय प्लेजर, थैंक यू।
1: थैंक यू शरद जी फॉर ज्वाइनिंग अस। Well, friends, before we wrap up, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise nearly 1%. Sensex jumps over 700 points. Nifty settles above 23,800. And India's wholesale inflation accelerates to 9.68% in May this year. And global crude oil prices tumble amid US-Iran peace deal announcement. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj पाठक, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। नमस्कार।
7: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक

0: सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट विट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Following the talks, both leaders signed 11 agreements to expand the bilateral cooperation. The agreements were inked in areas of labour migration, defence, digital technologies, higher education and quantum communication. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्ने

0: में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाकर के दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं, बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें
0: जी। एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से, अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली

0: गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई है। और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहां अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहां लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, एक डेढ़ लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है।

0: लेकिन जब विकास हो जाता है तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का यूपीआई कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है। और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे। ओनरशिप के लिए

0: थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी मोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए। इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाएं ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws under the Jan Vishwas framework. India strived to reduce friction, formalize the economy and rebuild trust between the state, enterprise and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction from earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
5: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose. Rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit. The private sector has a trust deficit. Non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chore, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the chore. So I think that mentality in the regulatory system of the license Raj, which by definition believed the world was shortage rather than abundance. Ambassador didn't have clients, it had hostages. But after that, we have released and we didn't get wiped out by foreigners. The fastest growing car companies are Tata's and Mahindra today. They are Indian companies. They are doing very well. So I think the notion that we should be scared of foreigners informed that debate, which is just a lack of low self-esteem. We don't have to be Western to be modern. We do have to be modern. So we have to create a high trust society. And that's why I think this agenda of formalization and moving to Jan Vishwas has been a very important shift in thinking about reforms rather than copying the West. I think China, Deng Xiaoping used to call Gorbachev stupid because he took all the Western reforms and blindly did them. And then he lost his job and Russia has never recovered. While China said, yes, we need to modernize, but we will modernize at our own pace. We will modernize at our own recipe and we won't blindly copy the West. So I think that it is important to recognize that 1991 was important, but it was incomplete. We left out education. We left out formalization. We left out corruption. We left out bank reform. We left out labor reform. We left out primary education reform. So I think obviously every country is a river rather than a pond, and you can never step in the same river twice because the river has changed and you have changed, as Heraclitus used to say. But my sense is that building on the last 12 years of formalization, moving to rules, lays a strong foundation or a neve for Jan Vishwas and Jan Vishwas Siddhant to become the basis of policy in the next 10 years.
4: So what you're saying is that we have now launching a new philosophy of governance, which will be heavily leaning towards rules-based rather than the exceptions-based that existed earlier.
5: This is not more cooks in the kitchen. It is a different recipe. See, there is a certain thought world that prior philosophy had of distrust. There is a certain thought world that it had of control. There is a certain lack of intellectual humility in Mahalanobis's spreadsheet model. An economy is not a spreadsheet. Biology is more important to understand than physics. You know, Mahalanobis was a mathematician, which is even more assumes a level of understanding. So I think the level of the license Raj created an administrative state which was built on distrust, which was built on control, and which was built on certainty. I think the last 10 years, 12 years are more intellectually humble. We recognize that the world is a difficult place and we have to make up. It is trying to release some of the controls, whether it is removing the criminal provisions, whether it is removing other things. And it is not built on certainty that old system had.
4: In other words, once business is free from seeking permission, seeking clearances, their entrepreneurial spirits will be unleashed. So economic dynamism in the Indian economy should accelerate.
5: Well, it's not God's will that India should be fourth in total GDP, but 128th in per capita GDP. I mean, it is our choices. You know, Dumbledore tells Harry Potter and Chamber of Secrets. It is our choices more than our abilities that reveal what we really are. And I think we made some really bad

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
4: अच्छा
3: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। और दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी। और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर एक विशाल सफाई अभियान चलाया। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना था। इस अभियान में 15,000 से अधिक नागरिकों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान यमुना के घाटों, नदी तटों और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की व्यापक सफाई की गई। 116 से अधिक मीट्रिक टन कचरे को इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अभियान के दौरान एकीकृत किए गए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारित किया गया, जबकि पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों का अनुकूल तरीके से विसर्जन सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और जन भागीदारी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर यमुना पुनर्जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 ट्रेश स्कीमर, 28 नावे, 28 जीसीबी मशीनें, 84 लोक निर्माण विभाग की मेंटेनेंस वैन और एक एम्बुलेंस तैनात की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ यमुना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का पहला चरण 22 जून को डिजिटल शुभारंभ के साथ शुरू होगा। दूसरा चरण जुलाई के पहले सप्ताह में मेगा रिज वृक्षारोपण अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जुलाई के मध्य में तीसरा चरण होगा, जिसमें जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अभियान को सफल बनाने के लिए वृक्ष रथ चलाए जाएंगे। ये रथ कॉलोनियों, आवासीय परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त पौधे पहुंचाएंगे। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभियान के तहत ई फॉरेस्ट, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, वृक्ष रथ, जियो टैग पौधारोपण और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले पर्यावरण रक्षक प्रमाण पत्र जैसी पहले शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों की भागीदारी और आसान तथा प्रभावी बनेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी के विकासपुरी में एक नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह आधुनिक सुविधा दिल्ली के नागरिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री संधू ने कहा कि यह सुविधा हजारों स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच और सुरक्षित तथा तेज प्रसंस्करण को सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी क्षेत्र से विधायक डॉ पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद संस्थानों में आधार नामांकन की सुविधाओं को जन्म पंजीकरण सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
3: आधार के माध्यम से नवजात शिशुओं के लिए नई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब एनसीडीएस, एनडीएमसी में नवजात शिशुओं के जन्म पंजीकरण के साथ आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे नवजात बच्चों के जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का जोड़ना संभव होगा।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो मंडे पहल के तहत आज मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की और उसके बाद स्कूटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे।

0: इस अवसर पर श्री सूद ने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया कि वे पेट्रोल और ईंधन बचाने के लिए मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो से सफर करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
1: राज्य सरकार ने सोमवार को मेट्रो मंडे का दिन दिया है, अपने सब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का भी निर्णय किया है। अगर उसमें से 25% पैसा वे लोग अपने मेट्रो कार्ड में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि हम ईंधन को बचाएं, इसको राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मैं हर मंडे सफर करता हूं।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सवेरे लखनऊ से पहुंची। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज शास्त्री नगर में स्थित एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मॉनसून से पहले तैयारियों का आकलन करने के लिए इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हैं जिससे वर्ष 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
4: हमारा प्रशासन व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। तो सारे बैराज से सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पर रहती है। तो हर स्थिति से सरकार हमारी तैयार है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से पहले कल विशेष योग कार्यक्रम के लाइव योग सत्र में 4,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद

0: 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की समझ प्राप्त होगी। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों से देश और आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वन नेशन वन कार्ड योजना, लाखों लोगों को मुफ्त राशन और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर लोगों, खासकर बुजुर्गों से ठगी करने वाले एक फर्जी बीमा गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी पहचान को छिपाते थे और खुद को विभिन्न बीमा कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रूपये नकद, 3 कीपैड मोबाइल और 7 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में कल भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें हुई शुरू और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
6: रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।

0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की भू आधारित आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मिसाइल ने अपनी सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सुबह लखनऊ से आई। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रूपये की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Following the talks, both leaders signed 11 agreements to expand the bilateral cooperation. The agreements were inked in areas of labour migration, defence, digital technologies, higher education and quantum communication. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Modi said, "Elevation of relations to the status of a comprehensive partnership symbolizes shared beliefs, priorities and future."
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी राग के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो आज राग बिहाग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इस राग से जुड़े हुए गीत हम सुनेंगे। वैसे अगर हम इस राग की बात करें तो राग बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। ये राग रस प्रधान राग है जो मुख्य रूप से रात्रि के समय गाया बजाया जाता है और ये राग अपनी चंचलता, गंभीर मिजाज के अनूठे मिश्रण के लिए जाना पहचाना जाता है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये पहला गीत।

सच्चा तेजा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

जी हाँ, राग बिहाग का जो थाट है वो बिलावल है और उसकी जाति ओड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर गा और संवादी स्वर नी है। गाने का जो समय है रात्रि का दूसरा पहर है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग।

0: दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मधुरिमा में राग बिहाग का जिक्र हो रहा है और देखिए ना वक्त कैसे धीरे धीरे सिमटने को है और ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें अभी इस राग के बारे में बताने को है, लेकिन जितना समय हमें अनुमति देता है उतनी ही बातें हम आपसे कर पाएंगे। जी हाँ, तो अगर हम इस राग के आरोह की बात करें तो नी स ग म प नी सा और अवरोह स नी ध प म ग रे सा है। और अगर हम इसके वर्जित स्वर की बात करें तो आरोह में रे और ध वर्जित होते हैं। और आइए अब इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत होगा फिल्म आपकी कसम से, और फिलहाल मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत में नीदरलैंड्स की टीम जापान के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स की ओर से एक के बाद एक अटैक किए गए, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने कई शानदार बचाव किए। मैच के 50वें मिनट में रयान ग्रोवेनबर्ग की फ्री किक पर नीदरलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं मुकाबले के 57वें मिनट में नकामुरा ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। 64वें मिनट में समरविल ने शानदार कर्लिंग शॉट लगाते हुए जापान गोलकीपर को छकाया और नीदरलैंड्स को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। मुकाबले के 88वें मिनट में जापान को कॉर्नर मिल गया। कोकी ओगावा शॉट डाइची कामदा पर पहुंचा और उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके साथ ही जापान ने स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं लग सका और दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा।
2: It's Ogawa. It's Bedlam. Here in Dallas.
1: वहीं मोंटेसरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्वीडन की ओर से यासीन अयारी, अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर योरकेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में ही स्वीडन की ओर से यासीन अंसारी ने पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर इसाक ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि ट्यूनिशिया ने भी वापसी की कोशिश की और उमर रेकिक ने हैनिबल मेजबरी के क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जबरदस्त खेल दिखाया और मुकाबले को एक तरफा कर दिया। योरकेस ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद मैटियास स्वानबर्ग ने स्वीडन के लिए चौथा गोल और यासीन अयारी ने आखिरी गोल करके टीम को 5-1 से जीत दिलाई। जबकि 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने फीफा विश्व कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। जर्मनी ने ई ग्रुप के पहले मैच में कुरासाओ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी की ओर से फेलिक्स नेमचा, निको काई हेवर्ट्स, जमाल मुसियाला, नेथेनियल ब्राउन और डेनिस उन्दाव ने गोल किए। कुरासाओ के लिए लिवानो कोमेंसिया ने शानदार गोल कर टीम के लिए इतिहास रच दिया। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कुरासाओ क्षेत्र और आबादी दोनों में ही अब तक सबसे छोटा देश है जिसने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।

0: कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां भारत ने शानदार अंदाज में प्रतियोगिता का आगाज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पुल ए के मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। सुनते हैं रोमांचक मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम की ओर से मुकाबले में दीपिका ने 2, नवनीत कौर ने 1 गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एशली सेसा ने 4th मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज 3 मिनट बाद ही अपनी बढ़त 2 गुनी कर ली। मेडलिन जिमर ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया। 2 गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने

0: धीरे धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरे क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाई जब ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24वें मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफ टाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई जो मैच के अंत तक कायम रही। वहीं दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन बाकी दो क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल होने नहीं दिया। भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद भारत 3 पॉइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अब अगला मुकाबला 16 जून को जापान से होगा जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैप।
1: और अब बात बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रांड प्री उस्तीनाद लाबेम प्रतियोगिता के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17 से 21 जून के बीच खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: इस 12 सदस्यीय टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों और कॉम्बिनेशन को परखने तथा यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है। ग्रैंड प्री उस्तीनाद लाबेम यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है जो 5 दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला ये इवेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा। इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और प्रीति पवार 54 किलोग्राम महिला टीम की अगुवाई करेंगी जिसमें साक्षी 51 किलोग्राम, प्रिया 60 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। पुरुष टीम में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाज 60, आदित्य प्रताप 65, सुमित 70, अंकुश 80, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम वर्ग और नरेंद्र 90 से अधिक किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
1: भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि वे 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक की प्रविष्टियों में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है जबकि 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रविवार को घोषित भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम सशर्त शामिल किया गया है। उन्हें इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना होगा। अगर वह ग्लासगो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के 3 भाला फेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 9 के जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकोर और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रोमेश तरंगा पथिरागे भाग लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आइए सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये रिपोर्ट।
3: बर्मिंघम के एच बेस्टन में भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान

0: 10 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। एक विकेट शेफाली शर्मा ने अपने नाम किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुकाबले में प्रोसेस पर ध्यान दिया।
1: आई थिंक जब यंग दीप्ति से अभी सीनियर दीप्ति में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक प्रेजर कंडीशंस एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स। जहाँ से मैंने खत्म किया था आई थिंक वहाँ से ही शुरू किया है। सो अच्छा लग रहा है बस कि अपने जो प्रोसेस है उस पे फोकस कर रही हूँ। वही चीज जो प्रैक्टिस में करती हूँ वही मैच में अप्लाई कर रही हूँ। दोस थिंग्स हेल्प मी। और बस यही है कि इसे आगे जाना है, रुकना नहीं है और डे बाय डे अच्छा करना है।
0: विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा कि मैच में अहम साझेदारी के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद जरूरी है।
2: स्टार्टिंग में जब मेरा चौका लगा पहला बॉल, तभी मेरा पता चला कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जब कट और ऐसा आ जाता है एक अच्छा शॉट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। रनिंग बिटवीन द विकेट वो सब में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर चौका भी नहीं आ रहा, छक्का नहीं आ रहा है तो हम कैसे भागे, हम जितना पुश कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें हेल्प किया गेम में रहने के लिए। जैसे 19 और 20 ओवर जैसे हमने बात की कि अभी ऑल आउट जाना है, क्योंकि जितना स्कोर आएगा रन बोर्ड में उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए, बॉलर्स के लिए हेल्प होगा।
0: इस जीत के साथ ही भारत ने महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड से खेलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
3: उधर दाम्बुला में ट्राई नेशन एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में आज रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया। इस मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 265 रन पर सिमट गई। सूर्यांश ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली, लक्ष्य का पीछा करने उतरी। श्रीलंका की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। सदीरा समरविक्रमा ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका ने 16 रन बनाए, जवाब में भारत 9 रन ही बना सकी। और अब बात एथलेटिक्स की। त्रिवेंद्रम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में कल भारत की पूजा ने महिलाओं के हाई जंप इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। 19 वर्षीय पूजा ने 1.81 मीटर की ऊंचाई के साथ बेहतरीन जीत हासिल की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को

0: कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.go.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए

0: 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता

0: दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आप को, थॉटलेस हो जाइए, सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है जो उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब भी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है। ठीक है, और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी।
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे सांस धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
5: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
0: जी बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
0: जी।
1: ठीक है, मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: वो
1: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
6: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
0: अनीता जी जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले
0: जी।
2: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
0: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
7: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश जी।
0: जी नमस्कार,
7: दोनों नमस्कार है
0: जी, सवाल पूछिए।
7: हम बड़ा सवाल ये है कि
0: शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक

0: बच्चा आसानी से कर सकता है।
1: जी, और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
2: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
2: डीजी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
2: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
2: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी।
3: जी,
2: और योगा करने से वो ये होगा
4: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है। उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
0: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
0: प्राणायाम और आसन
1: जी।
0: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
0: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
5: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर।
1: जी बताइए
5: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
0: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
0: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
0: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपाल भांति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत

0: जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम करते
1: हैं। जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रधानमंत्री
1: को भी शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद ऋषि जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा, और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डालें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
0: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
1: जी,
0: आपके मन को शांत करने के लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो है ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
0: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं। ये पहले नहीं हुआ करती थी, उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है। बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहां जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है। हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
1: जी जी जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
0: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भांति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
3: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
5: नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: रमेश गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
3: धन्यवाद।
5: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था

0: कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं लड़कियां हैं उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वे बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है। पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे कि श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
4: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
1: जी
3: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जानी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
5: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था
1: जी।
2: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
2: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है।

0: यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी, बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रहे हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।

दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारी को बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। रेल मंत्री ने कहा कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और रेल का संचालन भी प्रभावित न हो। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत। फ्रांस का एविया शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की है। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने पंचतत्र फोटो प्रदर्शनी का भ्रमण करने से पहले महल परिसर में ही एक विशेष योग प्रदर्शन देखा। राष्ट्रपति भवन के पास भारतीय प्रवासी समुदाय की बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस का एविया शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की आशा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला द सिल्वा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता भी शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल फ्रांस के एवियो पहुंचेंगे। एवियो पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री G7 देशों, साझेदार देशों और विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी विषय पर आयोजित कार्य सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ अच्छी बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित गाला डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व दर्पण के लिए फ्रांस के एवियों से अंकित कुमार।
0: अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। इसराइल की मीडिया ने बताया कि यरूशलम ने अंतर्राष्ट्रीय वापसी की

समय सीमा का पालन करने से इनकार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर सूचित कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री केर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया है। सरकार ने कहा है कि वह सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी अवरुद्ध करेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइट सहित ऑनलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। अन्य मुकाबलों में स्वीडन और ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत। फ्रांस का एविया शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसराइल ने कहा अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इतनी मीठी आवाजों से और जहां ये गाना प्ले हो रहा है उस रेडियो से कैसे प्यार ना हो, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी से कैसे प्यार ना हो। जी हां, आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ रितिका। तिरानवे में आई फिल्म रंग से आपने ये गीत सुना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। क्या बात होती है ना दोस्तों, जब दिल किसी की ओर खिंचने लगे तो सबसे पहले इंसान खुद से ही सवाल करता है ना। लेकिन जब ये एहसास थोड़ा और गहरा हो जाए तो मुलाकातों का इंतजार भी ना बढ़ने लगता है और फिर शुरू होता है वो दौर जब नजरों की भाषा सबसे ज्यादा समझ में आने लगती है। ऐसे ही मीठे इंतजार और चोरी चोरी मिलने की जो ख्वाहिश को ना बयां करता है हमारा अगला गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म नाराज से आपने ये गीत सुना, अनु मलिक का संगीत, और इस गीत को आवाज दी कुमार सानू ने। कहते हैं कि प्यार में कभी कभी दिल को संभालना भी पड़ता है, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को छिपाना भी पड़ता है, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी जब किसी की याद दिल पर छा जाती है तो हाल कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारा जो अगला गीत है ना, उस फीलिंग, उस एहसास को बखूबी बयां करता है।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

0: रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अम्बाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation, DRDO,

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
2: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
2: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो

0: पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, आरटीएस यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप है, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की 2 भी नहीं होगी 1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कह न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो

0: ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा। तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रूपये की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे एक साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रूपये लेता है तो महीने का अगर 1,000 रूपये भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रूपये का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रूपये ले उसी तरीके से वापस करें। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रूपये का यूपीआई कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको

0: करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। और जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान

गीत मेरे मनमीत में एक बार फिर से मैं आप सभी का रितिका स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1971 में आई फिल्म दुश्मन का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। और मंजू स्टूडियो में आ चुकी है कार्यक्रम निशिगंधा लेकर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से

0: इस भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। इंडिया एंड स्लोवाकिया हैव एलिवेटेड देयर टाइज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। द टू साइड्स ऑल्सो यस्टरडे इंक्ड 11 अग्रीमेंट्स टू बूस्ट कोऑपरेशन इन की एरियाज इंक्लूडिंग लेबर माइग्रेशन, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state of honor, the Order of the White Double Cross, first class, upon Prime Minister Modi. Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. Accepting the award, he noted that the honor was a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring bonds of the friendship between India and Slovakia. Prime Minister Narendra Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of the two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome him. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, France, with leaders of the world leading economies holding discussions on major international challenges. French President Emmanuel Macron is hosting a working dinner on the theme Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, Mr. Macron formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and the UK Prime Minister Keir Starmer, European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also participating in the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State Christopher Mirbant, Minister of the Foreign Affairs and Cooperation Isabel Beru Amadi, and Minister of the France, Finance and the Economy Federico Cotalado in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities, and deepening economic cooperation between India and Monaco. Union Public Service Commission UPSC has declared the result of civil services preliminary examination for this year. UPSC yesterday informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the civil services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो हर तरफ, दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधाशा और इंतजार में आँख की मात्रा की तरह। सादेश प्लव एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 7 सेकंड। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम निशिगंधा में, और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

प्यार की गलियों में जाने का मन हम सबका करता है, पर आजकल प्यार की गलियां जो हैं वो बहुत बदल गई हैं। पहले लोग प्यार में खत लिखते थे, दूर दूर से मिलने आते थे, मिलने जाते थे। अब तो सोशल मीडिया पर डीएम करने से प्यार का इजहार हो जाता है। खैर, जमाना चाहे जो भी हो, पर प्यार का एहसास हमेशा ही खास होता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप ही के लिए।

मुझे लगता है किस्मत की लकीरें भी मिट जाती हैं अगर दिल में चाहत सच्ची हो। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्यार में नसीब का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी को शिद्दत से चाहना, उसकी परवाह करना, उसकी यादों को अपने दिल में महफूज रखना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अगर आज की रात आपको कोई कश्मकश बन चुका है, आपकी यादों में कोई छा चुका है, तो उसे अपनी दुआओं में शामिल करिए, नसीब अपने आप बदल जाएगा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सादगी से, उसकी सीरत से प्यार होता है। और जब कोई ऐसा इंसान हमारे ज़िंदगी में आता है तो वह अकेला इंसान अनमोल मोती से कम नहीं होता हमारे लिए। फिर ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और वो इंसान एक तरफ।

मैं हासिल की हुई चीजों को भूल जाता हूँ। मैं हासिल की हुई चीजों को भूल जाता हूँ। मुझे याद रहते हैं खोए हुए लोग। याद रखो कि इस पृथ्वी पर तुम एक गुम हो चुकी लड़की हो। मैं एक याद में जीने वाला लड़का हूँ। तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोकर याद रखूंगा। इसके पहले कि प्यार हो जाए तुमसे, तुम अभी इसी वक्त गुम हो जाओ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त से ढूंढना शुरू करता हूँ। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ, आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:39:30। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप।

कभी कभी ना हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, और सच कहूं तो किसी जवाब की हमें जरूरत भी नहीं होती। पता है आपको, दिन भर हम सब अपनी जिंदगी में बहुत बिजी होते हैं, खुद के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन जब रात को हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो सिर्फ हम वही महसूस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं वही सच है। इस गाने को सुनने के बाद अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई है और आपके जहन में कोई चेहरा आया है, तो यकीनन आपकी रात सदाबहार है। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में, आप ही के लिए, रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत।

रफी साहब के आवाज में सुना आपने अभी ये गीत और ये गाना सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्टूडियो का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो हम हुए जज्बाती। वैसे हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जरूर होता है जो जब भी हमारी लाइफ में आता है तो हमारी जिंदगी महक उठती है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।

आपसे फिर मिलने का वादा रहा 1:10 पर। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। ऋषिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 1 सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियो पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियो पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकंड। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने और कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे अब ये गीत। फिल्म का नाम था तीन देवियां, संगीत था एसजी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। समय बदला, जमाना बदला, लेकिन इस गाने का जो चुलबुलापन था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब ये बना था गीत तब था। अगर इस गाने ने आपके मूड को थोड़ा सा भी फ्रेश किया है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे आने वाले गाने और भी एवरग्रीन हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज थी लता मंगेशकर की और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म दुनिया ना माने।

एसडी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:35 और 27 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। एक अभी मैंने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा, मुझे लगता है कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। अब ऐसी ही एक बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एकदम अलग अंदाज में साहिर साहब ने भी लिखा है। आइए सुनते हैं साहिर साहब की कलम से महेंद्र कपूर की आवाज में अगला गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म गुमराह से। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1963 में। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था B.R. चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरूपा रॉय, देवेन वर्मा और शशिकला ने। संगीत था रवि का और गीत लिखे थे साहिद साहब ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस फिल्म में शशिकला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। और अब अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में, फिल्म कोहिनूर से।

अभी आप सुन रहे थे साल 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का ये सदाबहार गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। संगीत की इस महफिल ने अगर आपके दिल को छुआ है तो रेडियो से हटने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आगे आने वाला गीत आपको फिर से जरूर पसंद आएगा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हंस

104.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। वक्त हुआ है 2:12:15। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हमसफर मंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, एहसास को गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम आशा जी और दिलराज कौर की आवाज़ के साथ।

भाई मौसम मस्ताना तो है लेकिन रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ और हम जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

अच्छा एक बात बताइए, कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर आपने ये लाइन किसी ना किसी के लिए जरूर गुनगुनाई होगी। गुनगुनाई है ना? मैंने भी गुनगुनाई है। भले ही वो प्यार झूठा रहा हो, पर दिल को जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। चाहे कोई इंसान, सामने वाला इंसान अपनी दिल की खिड़की को बंद कर ले, लेकिन हमारी कोशिश कभी भी कम नहीं होती। और यही प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कभी कभी मीठी मीठी बातें और सदाबहार गाने मिलकर एक ऐसा समा बांध देते हैं कि दिल अपने आप किसी के इंतजार में धड़कने लगता है।

0: एक दिन आएगा वो, एक दिन आएगा वो अपनी फुर्सतें समेट कर, और मैं बादलों के छोर से बरस कर उसकी आंखों से बह जाऊंगी। वो सहेजना चाहेगा मुझे अपनी हथेलियों में, मैं परछाई सी उसके सांचे में ढल जाऊंगी। वो पुकारेगा मुझे मौन के उस पार से, गूंजती रह गुजर पर मैं शब्द के अंतराल सी उसके होठों को छुआऊंगी। वो आएगा एक दिन और ठहरेगा मेरी छाँव में, उसको आंखों में समेट कर मैं प्रेम की पृष्ठभूमि में चली जाऊंगी। वक्त हुआ है 2:39 और 22 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के एहसास को, रात के दर्द को बातों से, गीतों से और शायद कुछ गजल से समझने की कोशिश करते हैं। अगला गीत लता जी की आवाज में।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती,

वैसे सच कहूँ, रात का ये जो वक्त होता है, ये जो पहर है, वो बना ही मोहब्बत के लिए होता है। मोहब्बत को महसूस करने के लिए, उसके दर्द को महसूस करने के लिए एक ऐसा वक्त है ये, जब चारों तरफ खामोशी है, लेकिन किसी ख़ास की याद ऐसे वक्त पर और ज़्यादा शिद्दत से आने लगती है। अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

ये बिल्कुल सच बात है, पुरानी राहें होती ही ऐसी हैं, खूबसूरत भी और थोड़ी दर्द भरी भी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन राहों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। मुड़कर देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं रुक जाना जिंदगी नहीं होता। कभी कभार पीछे मुड़ना, बहुत पीछे रह जाना भी होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। तो यादों के इस सफर से थोड़ा बाहर हम आने की कोशिश करते हैं और जिंदगी की नए राहों की तलाश करते हैं, नए सफर का आगाज करते हैं, क्योंकि जिंदगी पीछे मुड़ना नहीं होता, जिंदगी आगे बढ़ना होता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said, both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
1: AI ka bhavishya keval innovation se nahi, balki trust, responsibility और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron has hosted a working dinner on the theme, Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, he formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State, Christophe Mermand, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Isabella Barrault-Amadi, and Minister of Finance and Economy Frederic Cotelarata in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities, and deepening economic cooperation between India and Monaco. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capability. Defence Minister Rajnath Singh congratulated the DRDO team. A special investigation team, SIT, constituted to probe allegations of misappropriation of donations and valuables to the Ram Temple in Ayodhya, has begun its investigation. The SIT is headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, with Inspector General of Police Kiran S. and Special Secretary Finance Department Neil Ratan as members. The team reached Ayodhya yesterday, began its probe and visited the Ram Temple premises along with the Commissioner and DM of Ayodhya. Union Public Commission Service, UPSC, has declared the result of Civil Services Preliminary Examination, CSE, for this year. UPSC yesterday informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of final result. In FIFA World Cup football, debutant Cape Verde produced a stunning result in their opener, holding second-ranked Spain to a goalless draw in Atlanta, United States. An impressive performance by 40-year-old goalkeeper Vuzina held tiny Cape Verde, who won one of the tournament favourites, to a draw. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दांव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। कहानी का अहम किरदार क्यों खामोश है दानिश, कहानी का सफर आगे बहुत वीरान होगा क्या, मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती, अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या। अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या। भाई जिंदगी में दांव पेच लगे रहते हैं और दांव पेच से निकल कर ही हम असल जिंदगी को पा सकते हैं, और जब प्रेम इश्क मोहब्बत हो जाता है तब ये दांव पेच और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए हमराही प्रोग्राम हम और आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रही हूं, तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस बेहद खूबसूरत पहले गीत के साथ। रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज, फिल्म है फिर वही दिल लाया हूं।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा किसी ने कि खुशबुओं की तरह महकते गए, खुशबुओं की तरह महकते गए, तेरी जुल्फों के साए डसते गए। मेरे सपने अजीब सपने थे, मौसमों की तरह बदल गए। न तू मिला न तेरे घर का पता, हम तेरी दीद को तरस गए। कई बार इश्क मोहब्बत में ये लम्हे भी आ जाते हैं जब एक दूसरे को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, और कई दफा जिंदगी इतनी खूबसूरत मुलाकात करवा देती है कि भाई ये जिंदगी और ये पूरा दिन, ये पूरा जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है दो दिल।

वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है। मैं जिसकी याद में खोया हुआ सा रहता हूँ, वो मेरी रूह में है और मेरी जान में है। वो जिसकी रोशनी से कायनात है जगमग, उसी के नूर का चर्चा तो कुल जहान में है। वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप बेगुनाह है क्या कहना, क्या सफाई है वह क्या कहना, तुम ना रोको निगाह को अपनी, हम करे जब्त आह क्या कहना, तुझसे अच्छे कहां जमाने में, मुझसे टेढ़ी निगाह क्या कहना। तो चलिए अगला गीत हमराही प्रोग्राम में सुनते हैं रफी साहब की आवाज में।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, बस उतनी ही देर मेरा दिल भी मेरे पास रहा। अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, तमाम उम्र वो होठों पे बन के प्यास रहा। मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, बस उतनी ही देर मेरा दिल भी मेरे पास रहा।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और

0: स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के अंतर्गत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की आशा है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। काबो वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोंजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेलंगाना में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." He said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility.
1: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
2: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for their distinguished honour. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron has hosted a working dinner on the theme, Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, he formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State Christopher Mermand, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Isabella Barro-Amadi, and Minister of Finance and Economy Frederic Cotelarda in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities, and deepening economic cooperation between India and Monaco. A special investigation team, SIT, constituted to probe allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya has begun its investigation. The SIT is headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant with Inspector General of Police Kiran S and Special Secretary Finance Department Neil Ratan as members. The team reached Ayodhya yesterday, began its probe and visited the Ram Temple premises along with the Commissioner and DM of Ayodhya. Union Public Service Commission, UPSC, has declared the result of Civil Services Preliminary Examination, CSE, for this year. UPSC yesterday informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services Main Examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks, and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelims result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Union Home Secretary Govind Mohan has chaired a high-level review meeting to assess security and logistical preparedness of the NEET UG re-examination. The meeting yesterday reviewed the readiness of state governments for the examination with a focus on student convenience, security arrangements and maintaining the integrity of the examination process. In FIFA World Cup football, debutant Kepa Werde produced a stunning result in their opener, holding second-ranked Spain to a goalless draw in Atlanta, United States. An impressive performance of 40-year-old goalkeeper Vizina held tiny Kepa Werde, who held one of the tournament favourites, to a draw. In a Group G match, Egypt and Belgium played out a 1-1 draw in Seattle, United States, and earlier Sweden thrashed Tunisia 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेहद ही खूबसूरत बात के साथ। साथ क्या लाया था मैं और साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी काटी है मैंने अपनी सहरा के

करीब, एक समंदर है जो अपने साथ बहा ले जाऊंगा। तेरे माथे के शिकन को मैं मिटाते मिट गया, अपने चेहरे पर तेरा गम सजा ले जाऊंगा। साथ क्या लाया था और मैं साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी कोई इंसान एक ऐसी उम्मीद बनकर आता है कि वो हमारी जिंदगी को ही बदल देता है। उसकी मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि खूबसूरती चेहरे में नहीं, सोच और हौसलों में होती है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर मुलाकात कुछ नया सिखाने के लिए आती है।

जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जिंदगी भी बदलती है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत आती है। इसीलिए उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि नई रुत भी बस आने ही वाली है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने में होता है। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की कद्र करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थाम कर रखें, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, जैसे चरखा लगातार हम चलता है और हमें मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की सीख देता है और बिना रुके चलता है, वैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम इंसानों को भी लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। छोटे छोटे कदम ही एक दिन हमें बड़ी मंजिल पर पहुंचाते हैं, तो बस रुकना मत।

और इसी के साथ अरुणिमा का यही संपन्न होती है। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने

0: हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना और विदर्भ में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
0: AI का भविष्य केवल innovation से नहीं, बल्कि trust, responsibility और human dignity पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और strategic convergence का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian in France today to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by French President Emmanuel Macron upon arrival. The 52nd G7 summit has begun yesterday in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron has hosted a working dinner on the theme Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, he formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State. Christophe Mirnant, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Isabella Berro-Amadi and Minister of Finance and Economy Frederic Cotelarda in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities and deepening economic cooperation between India and Monaco. A special investigation team, SIT, constituted to probe allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya has begun its investigation. The SIT is headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant with Inspector General of Police, Kiran S. and Special Secretary Finance Department Neil Ratan as members. Union Public Commission Service, UPSC, has declared the result of Civil Services Preliminary Examination, CSE, for this year. UPSC yesterday informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of final result. The candidates can download the prelims result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Union Home Secretary Govind Mohan has chaired a high-level review meeting to assess security and logistical preparedness of the NEET UG re-examination. The meeting yesterday reviewed the readiness of state governance for the examination with a focus on student convenience, security arrangements and maintaining the integrity of the examination process. In FIFA World Cup football, debutant Cape Verde produced a stunning result in their opener, holding second-ranked Spain to a goalless draw in Atlanta, United States. An impressive performance by 40-year-old goalkeeper Wisenha held tiny Cape Verde, who would one of the tournament favourites, to a draw. Earlier, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। सरे शाम ठहरी हुई जमी, आसमां है झुका हुआ, इसी मोड़ पर मेरे वास्ते वो चराग लेकर खड़ा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो।